মধুস্মিতা দ্রুমাদল শোভিনী সুহাসিনী সুমধুর ভাষিণী।

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমার প্রতিমা মন্দিরে।

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026 सुबह के 11:58 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

नैनी जैसलमेर कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्ही साथियों का आपके अपने कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। और मेरे प्यारे नन्हे मुने दोस्तों से करने कुछ बातें साझा लेकर हाजिर हूँ उनका अपना कार्यक्रम। मैं हूँ आपकी रेडियो दीदी प्रीति भाटिया, तो कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे उम्मीद है बच्चों आप खुश होंगे, अपनी छुट्टियों को बड़े मजे के साथ बिता रहे होंगे। पर हम जानते हैं ना, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कैसे करते हैं, तो हम करेंगे अपने कार्यक्रम की शुरुआत जय हिंद के साथ। जय हिंद जितनी दफ़ा हम बोलते हैं उतनी दफ़ा ऐसा लगता है कि हमारे दिल के जो तार हैं वो भारत के साथ और जुड़ते जा रहे हैं, मतलब हम और ज़्यादा अपने देश से कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने देश को जान सकें, अपने देश को पहचान सकें। अब देखिए, जहाँ देश को जानने और पहचानने की बात आती है, वहाँ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, वो ये कि हम आखिर अपने देश को कैसे जान पाएंगे। हमारे पास अपने देश को जानने का तरीका महज किताबें तो नहीं होती बच्चों। हम अपने देश को तब जान सकते हैं जब हम अपने बड़े बुजुर्गों से कई बार बात करें, उनके ज़माने में क्या होता था वो पता करें, जब हम अपनी कला संस्कृति साहित्य के बारे में अलग अलग किताबें पढ़ें। अच्छा, बात बुज़ुर्गों की आई है ना बच्चों, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे घर के, जो बड़े होते हैं, वो बिल्कुल वटवृक्ष की तरह होते हैं, बरगद के पेड़ की तरह होते हैं। वो पेड़ जो हमें कम से कम छाँ तो देता है, कई दफ़ा वो हमें फल नहीं दे पाता, फूल नहीं दे पाता, पर हाँ उस पेड़ के साए में जब हम बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हम उनके साथ दुख दर्द बयान कर सकते हैं। और बुज़ुर्गों के साथ एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि 60 और 8 बराबर होते हैं, मतलब जो एक उम्र आने के बाद में है ना, दिल वापस बच्चा हो जाता है। तो आप देखिए, जिन घरों में बुज़ुर्ग होते हैं उन घरों में रौनकें होती हैं, उन घरों में हो सकता है कुछ चीज़ कम हो या ज़्यादा हो, पर पता नहीं क्यों बुज़ुर्गों के साए में बड़ी बरकत होती है। आप देखिए, वो बच्चे जो अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ बड़े हुए हैं, जिन्होंने कहानियाँ सुनी हैं, उनके ज़माने की कुछ बातें सुनी हैं, उनमें एक अलग ही आपको खुशी ज़िंदगी के प्रति देखने को मिलेगी। या कहा जाए कि पुराने लोगों के जो तजुर्बे होते हैं, उनके समय का जो संघर्ष होता है, वो हमें कहीं ना कहीं हौसला देता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो दौर जिस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, हम बहुत खुश नसीब थे उस समय में। वो समय जब हम वीडियो गेम नहीं खेलते थे और हम गली गलियों में खेलते थे अपनी, हर एक गली में आप देखिए शाम पड़े बड़ी अलग ही चमक होती थी, बच्चों का झुंड का झुंड और तरह तरह की आ रही आवाज़ें, और ऐसा लगता था मानो कुछ अलग ही रंग फैला हुआ है। आज उस समय में देखने को नहीं मिलता। आज प्लेग्राउंड स्पेशली बने हुए हैं, हम स्पेशली बच्चों को लेकर के जाते हैं, 100 से 1 घंटा बच्चा के लिए फिर लेकर के आए, पर वो रोज़मर्रा बाहर निकलना, वो हुल्लड़ मचाना, वो सब चीज़ें तो कहीं गायब हो गई हैं। और आप सोचिए, बड़े अच्छे से बच्चे खाते थे पीते थे, किसी के घर चले गए वहाँ कुछ दे दिया तो वो खा लिया। आजकल की तरह इतनी औपचारिकता, इतनी फॉर्मेलिटी तो ज़िंदगी में थी भी नहीं। और हमारे समय से पहले बच्चों, जब हम अपने मम्मी पापा या दादा दादी से बात करते हैं तो पता चलता है उनका समय तो और अलग था, मतलब पूरे मोहल्ले के आप बच्चे हो। आप अगर आपके घर में आप अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो, नहीं है, और आस पड़ोस के 5-6 घरों में आपने ढूंढा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लोग बहुत मिलजुल के रहते थे, मिलजुल के काम करते थे, और जो संबोधन होता था ना, वो आंटी नहीं होता था, वो बड़ा प्यारा सा संबोधन होता था, मासी, काकी, बुआ, ताई, जीजी, भाभी, इस तरह के संबोधन होते थे, तो प्यार कुछ ज़्यादा होता था। बुज़ुर्ग हमें जीवन शैली बताते हैं, जीवन जीने के तरीक़ों के बारे में बताते हैं, कैसे हम संयम रखें, कैसे हम सादगी में रहें, कैसे हम कम में चल पाएँ, ये तमाम बातें बुज़ुर्ग बताते हैं। तो मुझे लगता है वो हर एक चीज़ जो ना कॉपी किताबों में नहीं मिले, वो हर एक चीज़ जिसे शायद हम अनुभव करके हासिल ना कर पाए, वो

बुजुर्गों के साथ तो बहुत अच्छे से हो जाता है, मतलब उनका होना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। उनका हमारे घर के आसपास रहना, हमारे घर के नहीं बच्चों, हम बुजुर्गों के साथ रहते हैं, वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। देखिए, जब किसी का जन्मदिन होता है या फिर विवाह की वर्षगांठ होती है या त्यौहार आने वाले होते हैं, तो जिन घरों में बुजुर्ग होते हैं ना, उन घर में एक अलग ही माहौल होता है। वो हमेशा हर बच्चे से पूछेंगे, अच्छा तुझे क्या चाहिए। कई बार मम्मी पापा मना कर देते हैं कुछ दिलाने का, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं नहीं नहीं इसका मन है, बच्चे को ये दिलाओ, बच्चा ये लेकर के आ जाएगा। हमारे बर्थडे पर हमें अलग से उपहार देते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं, और सबसे बड़ी बात, भर भर के दुआएं देते हैं। कितनी आशीषें, कितनी बख्शीशें हमें हमारे बुजुर्ग देते हैं। तो मुझे लगता है एक खजाना होते हैं बुजुर्ग, और इतना भरा हुआ खजाना है ना कि जब तक बैठे हैं तब तक सर पे हाथ फेरते रहेंगे। अगर हम रो रहे हैं तो हमारे आंसू पोंछने के लिए 24/7 कोई होता है। तो हमेशा अपने बुजुर्गों से कनेक्टेड रहें, उनसे जुड़े रहें। वो जो आपको बताना चाहे, जो आपको समझाना चाहे, उसे शांति से समझें, क्योंकि उनकी पूरी उम्र का जो निचोड़ है ना, जो सार है, वो आपको बताते हैं। अच्छा, बातें तो और भी है, खूब सारी है, बहुत सारी है, पर चलिए गुनगुनाते हैं एक मीठा संगीत।

0: दोस्त तो एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्त तो एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है,
1: बोलो ना, चुप क्यों हो गए?
0: भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था।
1: जा रहा था?
0: नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
2: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
1: बताता हूँ बताता हूँ।
0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
3: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई छुट्टी बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे।

0: अरे बचाओ मैं डाल रहा हूँ, मैं पसीना, वो डाल मैं जंगल, बचाओ, अरे भागो,
1: फिर क्या हुआ?
2: खुदा की कसम मजा आ गया मुझे मार कर बेशरम खा गया।
1: खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है।
3: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ,

तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक बहुत मीठा सा गीत सुना, बहुत प्यारा सा आपने गीत सुना। अच्छा, गीत संगीत की तासीर ही कितनी अलग सी होती है ना। आप देखिए, जब हमारा मूड बड़ा अच्छा हो, जब हमारा मूड बड़ा खराब हो, तो इस हर तरह के समय में हम जो हील कर पाते हैं, हम उस समय से जो निकल पाते हैं, वो सिर्फ तभी संभव होता है जब हम कुछ अच्छा सुने या गुनगुनाए। और धीरे धीरे ना हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो संगीत का इंसानों के साथ, सुर का, शब्दों का इंसानों के साथ कुछ ताल्लुकात ही ऐसा है। अच्छा, इंसान तो छोड़िए, आप सोचिए कि जब शाम पड़े, कहीं आरती होती है और मंगल ध्वनि गूंजती है, घंटी की आवाज़ आती है, तो आसपास के माहौल में ऐसा लगता है यानी कुछ पलों के लिए सब चीज़ें रुक रही हो, बड़ी शांति आ रही हो। तो चलिए, शांति और अच्छे से गीत को सुनने के बाद में, बुजुर्गों की सोहबत में पलने बढ़ने की खूबियां जानने के बाद में, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैं आपसे बात कर रही हूँ बच्चों, कि आजकल चारों तरफ बीमारियां बहुत फैली हुई है। हम जानते हैं कि इंसान बीमारियों की चपेट में बहुत जल्दी आ रहा है। इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं, हमारी जीवन शैली में आया परिवर्तन, हमारे खान पान की आदतें जो ठीक होनी चाहिए। हमें लगता है कि हम अच्छा खा रहे हैं, पर बेसिकली हम उतना अच्छा नहीं खा रहे हैं। और जितना जंक फूड खाया जाता है, घर के बाहर का खाना खाया जाता है, उतना ही हमारे शरीर पर उसका नकारात्मक प्रभाव होता है। और सबसे बड़ी बात, तनाव, ये हमें किस कदर खत्म कर रहा है, हमें मार रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। पहले एक टाइम था जब माना जाता था कि यार बच्चे बड़े फ्री रहते हैं, बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चहकते रहते हैं, महकते रहते हैं, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती, कोई गम नहीं होता। पर आप जानते हैं आजकल तो बच्चे भी बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत तनाव में है, एंजाइटी हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सिचुएशन से डील नहीं कर पाते हैं। जो भी परिस्थिति है, वो अच्छी है या ख़राब है, वो सदैव के लिए नहीं है। अगर आज बच्चों आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसा आपको लगता है, या आपको लगता है आप लकी नहीं हैं, आप भाग्यशाली नहीं हैं, आपको बड़ी मेहनत करके कुछ मिल रहा है, टिक नहीं रहा है, खूब पढ़ाई करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, या घर में कोई डांट रहा है, ऐसी हज़ारों चीज़ें होती है। पर आप जानते हैं ये सिर्फ अल्पकालीन है। इनमें से कोई भी बात इतनी बड़ी तो नहीं होती है कि हम उसे दिल पे ले लें और बस हम अपना सब कुछ उसके पीछे छोड़ दें। और आप जानते हैं, आज 17 मई को पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। अब वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे क्या है, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। आपने सुना है ना, हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है, जिसे हम इन शॉर्ट BP कहते हैं, हिंदी में रक्तचाप कहते हैं, ये कई बार निम्न होता है, कई बार उच्च होता है, यानी लो BP भी होती है और हाई BP भी होती है। अब ब्लड का अपना हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, उसका एक पैटर्न है, उसका एक तरीका है। अब अगर आप सोचिए कि लो BP होगी, मतलब हमारे शरीर के सभी हिस्सों तक वो खून आराम से पहुँचेगा नहीं, तब भी दिक्कत, और अगर हाई BP हो जाएगी तब भी दिक्कत। और कई बार ये लक्षण जो हाई BP के हैं ना, ये हमें विजिबल नहीं होते हैं, मतलब हमें अच्छे से दिखते नहीं हैं, पर शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं जिससे हम इस समस्या से समय रह

रहते बच पाएं, हम खुद को बचा पाएं। तो देखिए बच्चों, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि ना कई बार ऐसे लक्षण हमें दिखाई ही नहीं देते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर ही हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब सवाल ये है कि होता क्यों है? हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है। तो जब हमारा खान पान अनियमित होता है, मतलब प्रॉपर नहीं होता, सिस्टमेटिकली नहीं होता, रात को आपने 1 बजे भी कुछ खा लिया, कई बार आपने लंबे टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक कुछ नहीं खाया, फास्ट पे आप रह लिए, कई बार आपने मौसम के अनुरूप नहीं खा के मौसम के प्रतिकूल कुछ खा लिया, फॉर एग्जाम्पल गर्मी में हमें तला भुना हुआ ज़्यादा मसाले वाला कम खाना चाहिए, बट आप वही खा रहे हैं, आपको जो खाना चाहिए आपको नहीं खा रहे। तो ये जो आदत है बच्चों, ये धीरे धीरे तो हमें नुकसान पहुँचाएगी ही। और जब हम बहुत स्ट्रेस पालते हैं ना, देखिए तनाव सिर्फ हमें ख़त्म कर सकता है, चिंता है वो चिता समान होती है। हम व्यायाम नहीं करते हैं, हम मेंटली फ्री रहने के लिए, आप सोचिए हम कुछ अच्छा सा काम अपनी पसंद का कर लें, किसी से बात कर लें, स्ट्रेस फ्री रहें, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम उसी उसी दर्द और तनाव और मुश्किल में, वही परिस्थितियों में डूब जाते हैं। तो इस समय इन सारी चीज़ों, और सबसे बड़ी बात है ज़्यादा नमक। और आप जानते हैं बच्चों, आपके जैसे बच्चे कितना नमक खाते हैं, जितनी भी आप बाज़ार की चिप्स जैसी चीज़ें खाते हैं उनमें बहुत एक्सेस में सॉल्ट होता है, और जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो ज़्यादा शुगर और ज़्यादा सॉल्ट हमें बहुत नुकसान पहुँचाता है। अब इससे बचने के लिए क्या करें भाई? तो हर एक ताले की चाबी होती है, हर समस्या का समाधान होता है। तो बचने के लिए क्या करना है कि नियमित व्यायाम करें, अच्छा भोजन लें, प्रॉपर डाइट लें, स्ट्रेस फ्री रहें। और अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी की टेंडेंसी हाई बीपी की है तो उसे समय समय पर चेक करवाते रहें। तो याद रखिएगा, स्वस्थ जीवन शैली ही स्वस्थ हृदय की पहचान है। तो आप जो मुझे सुन रहे हैं वो सिर्फ बातें मेरी नहीं सुन रहे हैं, बल्कि आप मेरी बातों के ज़रिए एक ऐसी समस्या के बारे में सुन रहे हैं जो पूरे दुनिया में बहुत आम हो गई है। और ये छोटी लगने वाली समस्या इंसान को हिला देती है, कई बार असमय मृत्यु के लिए जिम्मेदार होती है। तो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, गलत खान पान और आराम की कमी ने इस बीमारी को ना बहुत कॉमन कर दिया है। कभी कभी लगता है एकदम ठीक तो है इंसान, लेकिन ठीक नहीं होता। हाई बीपी दिल, दिमाग और किडनी पर असर डाल रहा होता है। तो बस छोटी छोटी सी आपको आदतें आजमानी है, या अपनी आदतें अपने जीवन में लानी है, जैसे मॉर्निंग वॉक करिए, प्लीज़ करिए, थोड़ा बहुत योग करिए, नमक ऊपर से डालना बंद कर दीजिए, कम खाइए, नींद अच्छी लीजिए और शांत रहिए। तो याद रखिएगा, दवाइयों से बेहतर है सावधानी, और स्वास्थ्य से बड़ी तो कोई दौलत होती ही नहीं है। तो आज संकल्प लेते हैं कि हम अपने घर परिवार में सबको जानकारी देंगे। घर में जब आप देखें किसी को बहुत ज़्यादा नमक खाते हुए, तो तुरंत टोकें और उन्हें समझाएं कि ऐसा करना उनके लिए नुकसानदेह है। और अब मैं आपको समझाती हूँ कि गीत सुनना ना बड़ा अच्छा होता है, गीत संगीत सुनना। तो आइए सुनते हैं, गुनगुनाते हैं एक मीठा सा प्यारा सा गीत।

0: ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
0: ऐसे नहीं, बोलो में गाओ।

पता नहीं है धनी दीदी की दाँत

तो प्यारे बच्चों, एक मीठा संगीत हमने सुना, गुनगुनाया, और इसके बाद में मैं बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी कहानी आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि आप सभी ने तेनालीराम का नाम तो सुना ही होगा। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में बड़े ही बुद्धिमान दरबारी रहे हैं वो, और चातुर्यता थी, बहुत कुशल थे वो अपने काम में भी। तो हुआ ये कि एक बार तेनालीराम अपने घर में अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे या सोने जा रहे थे, तब तक उन्हें कुछ आवाज़ें आई। जब झांक करके बाहर खिड़की में देखा तो दो चोर दिखे। अब तेनालीराम ने सोचा कि ऐसे ही चोरों को पकड़ने में तो मज़ा नहीं आएगा, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट तो लाना चाहिए। अब ट्विस्ट लाने के लिए पता है तेनालीराम ने क्या किया? उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, सुनो, आसपास चोर बहुत हो गए हैं। पत्नी ने कहा, हाँ भाई, बहुत खबर आती है, अभी उस पड़ोसन की चोरी हुई, अभी इसकी हुई। तो तेनालीराम ने कहा, देख हम क्या करते हैं, हमारे पास जितना भी घर में सोना चांदी है ना, उसे वो संदूक में डाल देते हैं, उस संदूक को कुएं में फेंक देते हैं, ताकि कम से कम कोई सोच ही नहीं पाएगा। अब उनकी पत्नी ने कहा, हाँ। तो उन्होंने संदूक में कुछ पत्थर और कुछ ऐसा ही जो वेस्ट सामान होता है ना बच्चों, वैसा कुछ डाल के उसको थोड़ा भर दिया और उसे कुएं में फेंक दिया। अब दोनों बावले जो थे चोर वो हो गए खुश, अरे वाह, अब तो आराम से हम ले लेंगे इस संदूक को। पर कुआं पानी से भरा हुआ था और तेनालीराम का जो घर था वो उनके खेत के पास था, फार्म हाउस की तरह आप समझ सकते हैं। अब चोरों ने उस संदूक को निकालने के लिए पूरी रात उस कुएं में से पानी निकाला, पानी फेंका और फिर दिखा संदूक। जब उतर करके संदूक को लिया, बड़े खुश होकर बाहर आए तो देखा, अरे यार, ये संदूक तो बिल्कुल बेकार सा निकला, इसके अंदर तो जो निकला है वो दो कौड़ी का भी सामान नहीं, कचरा सा है, क्या करें उसका। दोनों सर पे हाथ रख के बैठ गए। तेनालीराम ने आके कहा, अरे भाइयों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत आभार, ये जो तुमने संदूक लेने के लिए मेरे कुएं को खाली करा है ना, इस बहाने कम से कम मेरे खेत में मेरी फसल को पानी तो मिल गया, बिना मेहनत करे मेरी सिंचाई तो हो गई। और फिर उन्होंने चोरों को पकड़वाया ताकि अगले किसी के घर में चोरी ना करे। तो ये कहानी हमें बताती है कि कहीं सुनी बातों पे भी ऐसे ही विश्वास नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ घड़ी की सुइयां कह रही है आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। ढेरों बातें होगी बच्चों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम नन्हे जैसलमेर, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। ये आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अगले आधे घंटे तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत, जहां नगमों का सिलसिला आपके साथ निभाऊंगा मैं, आपका रेडियो दोस्त विक्रम।

श्रोताओं, फिल्म है बेटा जिसका गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। अनुराधा पौडवाल और बाबला मेहता की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, आनंद मिलिंद का संगीत।

0: अच्छी यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
0: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: आरबीआई कहता है
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अगले गीत में आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश पाटकर की। समीर के बोल हैं आनंद मिलिंद का संगीत। फिल्म है दिल। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: बदलो बदलो आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: अगला गीत हमने चुना है फिल्म आशिकी से। अनुराधा पौडवाल की आवाज है, साथ में आवाज है कुमार सानू की, बोल समीर के, संगीतकार नदीम श्रवण।

दिल है कि मानता नहीं, यह फिल्म का नाम जिसका गीत आइए सुनते हैं। आवाजें अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और साथियों की है, बोल हैं फैज अनवर के, संगीतकार नदीम शर्मा।

आप सुन रहे हैं आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, अनुराधा पौडवाल, पंकज उधास और साथियों की आवाजों में। फिल्म है बाहर आने तक, बोल इब्राहिम अश्क के, धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

आकाशवाणी जैसलमेर से आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। सुरों के सफर में आज आपका हम कदम था आपका रेडियो दोस्त विक्रम। आपसे थोड़ी देर बाद यानी दोपहर 1 बजे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हम रिले करेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। श्री मोदी की 2018 में स्वीडन की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भर्ती परीक्षाओं में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों और गलत उत्तर कुंजी को लेकर बार बार याचिकाएं आने को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को कहा है कि वे कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ आईएएस

0: अफसरों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन करे। ये कमेटी इस विषय पर गहन परीक्षण कर भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए SOP बनाने के साथ ही अन्य सुधारात्मक उपाय भी निर्धारित करेगी। अदालत ने कहा कि कमेटी ये भी परीक्षण करेगी कि क्या ऐसे प्रश्न और उत्तर कुंजी तैयार करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल द्वितीय को लेकर दायर 45 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति PP चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्र कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बीच विकास कार्य प्रभावित होते हैं, आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं, पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और शिक्षा, बैंक तथा सरकार के संबंधित विभागों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी ने कल अजमेर से 3 नई नियमित साप्ताहिक ट्रेनों का शुभारंभ किया। इनमें अजमेर बांद्रा साप्ताहिक एक्सप्रेस, अजमेर दौंड साप्ताहिक एक्सप्रेस और अजमेर बांद्रा एक्सप्रेस शामिल है। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने ये जानकारी दी। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और उससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। आज ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। नागौर के अजमेर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हुई एक दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा चकढ़ानी गांव की सीमा पर एक बस और कार की आमने सामने की टक्कर से हुआ। कार सवार सभी यात्री बुटाटी के पास संत चतुर्दास महाराज के मंदिर जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जैसलमेर है और आप सुन रहे हैं हमारा प्रसारण FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मुंहल।

मूमल सुनने वाली सभी प्यारी सखियों को आपकी रेडियो सखी सुधा का प्यार भरा नमस्कार। तो सखियों, कैसे मिजाज है आपके और क्या चल रहा है आजकल? अब तो बच्चों की भी समर वैकेशन हो गई है, तो बच्चे भी अब परेशान करने के लिए घर पर ही है। बच्चों को खेलने कूदने का काफ़ी मौका भी मिल रहा है और आप भी व्यस्त हो गए होंगे। कभी किचन का काम भी बढ़ ही गया होगा, तो बच्चे घर पे रहते हैं तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस गर्मी में बच्चों का ध्यान रखना, बुजुर्गों का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है। सखियों, बच्चों से मुझे याद आया कि हम कई बार कहते हैं कि हम बहुत टेंशन में हैं, तनाव है, स्ट्रेस है हमें, हम परेशान हो जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि आज के समय में केवल बड़े ही नहीं, बच्चे भी तनाव का सामना कर रहे हैं? पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगिता, परीक्षाएं जो होती है या कई कॉम्पिटिशन होते हैं, मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, पारिवारिक वातावरण और दोस्तों से जुड़ी समस्याएं बच्चों के मन पर असर डालती है। यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए तो ये तनाव उनके व्यवहार, पढ़ाई और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पर तनाव को बड़ों से जोड़ते हैं, और बच्चे बोल भी देना कि वो परेशान है या काफ़ी चिंतित है तो हमें यूँ लगता है कि बच्चों को काहे की परेशानी या तनाव किस बात का। तो सखियों, बच्चों में भी तनाव होता है और बच्चों को तनाव से दूर रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उन्हें प्यार, सुरक्षा और खुलकर अपनी बात कहने का माहौल मिलना चाहिए। आजकल पढ़ाई और बदलती जो दिनचर्या है उसके कारण बच्चे भी तनाव महसूस करने लगे हैं। तो कुछ ऐसे आसान तरीके हैं जिनसे हम बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं, खुश भी रख सकते हैं। जैसे बच्चों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, जब बच्चा कुछ कहना चाहे तो उसे बीच में टोकिए मत, उसकी छोटी छोटी परेशानियों को भी महत्व दीजिए। इससे उसे भरोसा मिलता है कि परिवार उसके साथ है और हर बच्चा अलग होता है। तो तुलना करने या हर समय नंबरों की चिंता कराने से भी तनाव बढ़ता है। पढ़ाई का जरूरत से ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, मेहनत की तारीफ करनी चाहिए, सिर्फ परिणाम नहीं देखना चाहिए। खेलना बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। रोज थोड़ा आउटडोर खेल, दौड़ना, साइकिल चलाना या दोस्तों के साथ समय बिताना भी तनाव को कम करता है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों को चिड़चिड़ा और बेचैन बना सकता है। मोबाइल की जगह कहानी, चित्रकला, संगीत या खेल जैसी गतिविधियों को हमें बढ़ाना चाहिए। और एक बात और, सखियों के साथ बैठकर खाना खाना, बातें करना, छोटी सैर पर जाना या खेल खेलना बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा देता है। और साथ बैठकर खाना खाना या बातें करना तो हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कम नींद और गलत खान पान भी तनाव बढ़ाते हैं। तो बच्चे की उम्र के अनुसार पूरी नींद और संतुलित भोजन भी जरूरी है। हम बच्चों की हर गलती पर गुस्सा करते हैं, तो हर गलती पर गुस्सा करने से बच्चा डर और तनाव महसूस करता है। प्यार से समझाने पर वो खुलकर सीख भी सकता है। और हम बच्चों में योग और ध्यान की आदत भी डाल सकते हैं, जैसे हल्की सांस की एक्सरसाइज है, योग है तो और ध्यान है, तो ये बच्चों को शांत और एकाग्र चित्त बनाते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये बच्चों में तनाव दूर करने के उपाय तो बता दिए, लेकिन बच्चों में कैसे तनाव, कैसे पता चले हमें कि बच्चों में भी तनाव है या आपका बच्चा तनाव में है? तो यदि बच्चा बहुत चुप रहने लगे, जल्दी गुस्सा करे, पढ़ाई में मन न लगाए, नींद या भूख कम हो जाए, बार बार डर या चिंता जताए, तो उसे ज़्यादा प्यार और ध्यान की जरूरत हो सकती है। बच्चों की तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, उसकी छोटी छोटी सफलताओं की भी तारीफ करनी चाहिए, उसे अपने पसंद की हॉबी अपनाने देनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि घर का माहौल शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। खुश और आत्मविश्वासी बच्चा वही होता है जिसे घर में अपनापन, समय और समझ मिलती है। पढ़ाई और परीक्षा का दबाव, माता पिता की अधिक अपेक्षाएं, दोस्तों से झगड़ा या अकेलापन, मोबाइल टीवी का तो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, और अगर परिवार का माहौल तनावपूर्ण है तो ये सब बच्चों में तनाव के मुख्य कारण होते हैं। तो हमें बच्चों को प्यार और सहयोग देना चाहिए, उन्हें ये महसूस करवाना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं। और मानते हैं हम कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन लगातार पढ़ाई कराने के बजाय बीच बीच में आराम भी बच्चे को देना चाहिए। ये कहें कि
खेलने का समय जो है वो भी बच्चे को देना चाहिए। तो प्यारी सखियों, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, उन्हें डांट और दबाव से ज्यादा प्यार और समझ और समय की जरूरत होती है। यदि परिवार और स्कूल मिलकर बच्चों को सहयोग दे तो वे तनाव मुक्त, आत्मविश्वासी और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

तो सखियों, हमने अभी बात की कि बच्चे तनाव में रहते हैं और उसके कई कारण हैं। तो मुझे एक बात और याद आई कि बचपन तो हमारा भी निकला है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम इतने ज़्यादा तनाव में रहते थे जितने तनाव में आजकल बच्चे रहते हैं। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ना, वो आधुनिक टेक्नोलॉजी, मोबाइल गेम्स और बदलती जीवन शैली जो है, उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों का जो बचपन है वो गुम होता जा रहा है। क्योंकि हम बचपन में पारंपरिक खेल खेलते थे, और आज जो हमारे पारंपरिक खेल है वो लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का उनकी तरफ कोई रुझान नहीं है। भारत के पारंपरिक खेल हमारी संस्कृति, मेलजोल और शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, लेकिन बदलती जीवन शैली के कारण कई पारंपरिक खेल धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो कई ऐसे खेल हैं जो अब धीरे धीरे बहुत ही, उनका ये कह सकते हैं कि चलन कम हो गया। जैसे कबड्डी, तो ये ताकत, फुर्ती और टीम वर्क का खेल है। पहले गांवों और स्कूलों में काफ़ी लोकप्रिय था, लेकिन अब बच्चों का झुकाव मोबाइल और वीडियो गेम्स की ओर बढ़ गया है। और गिल्ली डंडा भी खेलते थे, लकड़ी की छोटी गिल्ली और डंडे से खेला जाने वाला ये खेल क्रिकेट का ही पुराना रूप माना जाता था। और आज तो ये खेल बहुत कम दिखाई देता है। और स्कूलों में पता है हम ना खो खो खेलते थे, तेज दौड़ और रणनीति वाला ये खेल बच्चों की फुर्ती बढ़ाता था। और अब इसकी जगह डिजिटल मनोरंजन ने ले ली है। और सतोलिया भी खेलते थे, जिसको सात पत्थर या पिट्ठू कहते हैं। तो इसमें सात पत्थरों को गिराकर और फिर सजाकर खेला जाने वाला ये खेल बच्चों में टीम भावना विकसित करता था, और बच्चे बहुत फुर्तीले भी होते थे। कंचे भी खेलते थे, रंग बिरंगी कंचों से खेला जाने वाला ये खेल कभी हर गली मोहल्ले में दिखाई देता था। लेकिन आज तो न ये खेल दिखाई देता है, न कंचे दिखाई देते हैं, और ना ही ये खेल खेलने वाले। रस्सा कसी भी होता था। ये खेल तो सामूहिक शक्ति और सहयोग का प्रतीक था, जो अब केवल कुछ आयोजनों तक ही सीमित रहा है। तो मोबाइल और वीडियो गेम्स का बढ़ता प्रभाव, खुले मैदानों की कमी, पढ़ाई और प्रतियोगिता का बढ़ता दबाव, पारंपरिक खेलों को पर्याप्त प्रोत्साहन ना मिलना, और शहरीकरण और बदलती जो जीवन शैली है, इसके कारण हमारे ये जो खेल है वो लुप्त होते जा रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए ना, तो पारंपरिक खेलों का सखियों बहुत महत्व होता है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बच्चों में टीम वर्क और अनुशासन की भावना बढ़ती है, मानसिक तनाव भी कम होता है, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा से हमारा जुड़ाव बना रहता है, और बच्चों का सामाजिक विकास भी होता है। इसलिए स्कूलों में पारंपरिक खेल दिवस आयोजित किए जाने चाहिए, गांवों में और शहरों में खेल प्रतियोगिताएं करवाई जानी चाहिए। बच्चों को मोबाइल से दूर करके खेलों के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है, और सरकार और समाज द्वारा भी इन खेलों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। सखियों, पारंपरिक खेल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है। यदि इन्हें संरक्षित नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ियां अपनी इस धरोहर से वंचित हो जाएगी। इसलिए हमें इन खेलों को फिर से जीवित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भारत की संस्कृति बची रहे और बच्चे भी आपस में मेलजोल बढ़ा सके। चर्चा को एक बार फिर विराम देते हैं, और आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश और एक प्यारा सा गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।

0: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सखियों, आपने कई बार एक पुरानी और प्रसिद्ध कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। जी हाँ सखियों, एक बहुत पुरानी कहावत है। इसका अर्थ है कि इंसान की असली हार या जीत तो उसके मन में होती है। यदि व्यक्ति अपने मन से हार मान ले, आत्मविश्वास खो दे और कोशिश करना छोड़ दे तो वह वास्तव में हार जाता है। लेकिन यदि मन में विश्वास, साहस और सकारात्मक सोच बनी रहे तो कठिन परिस्थितियों में भी सफलता मिल सकती है। ये कहावत हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए और मजबूत इरादे और मेहनत से जीत संभव है। जैसे यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले ही सोच ले कि वह पास नहीं होगा तो उसका मनोबल गिर जाएगा, लेकिन यदि वह मेहनत और विश्वास बनाए रखे तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। कई बार हम बात करते हैं मन को जीतना चाहिए, तो मन को जीतने का क्या अर्थ होता है? मन को जीतना यानी अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना। जब इंसान अपने मन को सही दिशा में चलाना सीख लेता है तब जीवन की कठिनाइयां आसान लगने लगती है। मन को जीतने के लिए कुछ सरल तरीके हैं, जैसे कि सकारात्मक सोच रखिए, अच्छे विचार मन को मजबूत बनाते हैं। हमें धैर्य और संयम रखना चाहिए। हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना सीखना चाहिए। नियमित ध्यान और योग करना चाहिए, इससे मन शांत और एकाग्र होता है। और हमेशा अच्छी संगति अपनानी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों का साथ मन को सही दिशा देता है और हमारे मन में एक पॉजिटिव विचार जो है वो आते हैं। गलत लोगों के साथ अगर हमारी संगति होगी तो हम भी नकारात्मकता से घिर जाएंगे और हमें भी लगेगा कि हम जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। और अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर पूरा कीजिए, क्योंकि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और मन भी मजबूत होता है। और क्रोध और नकारात्मकता पर भी हमें नियंत्रण रखना चाहिए, और क्षमा और समझदारी भी मन को हल्का बनाती है। इसीलिए कहा गया है कि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। तो मन के जीते जीत और मन के हारे हार। आप सब भी कोशिश कीजिए अपने मन को जीतने की, क्योंकि मन को जीतने का मतलब पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना।

प्यारी सखी, इसी गाने के साथ अब मैं आपको लेकर चलती हूँ किचन की तरफ। अरे रे, किचन की तरफ चलने का मतलब है किचन की साफ सफाई के आसान और असरदार तरीके हम जानेंगे, साथ ही जानेंगे कुछ किचन टिप्स। तो किचन की सफाई करनी है तो रोजाना साफ कीजिए किचन को। रोजाना की सफाई जो हम करते हैं तो खाना बनाने के बाद में, जैसे गैस स्टोव को तुरंत हमने पोंछ लिया ताकि तेल और मसाले जम ना पाए, और सिंक को भी रात में साफ करके सूखा छोड़ना चाहिए, इससे बदबू और दाग जो है वो कम होते हैं। और अगर फिर भी बदबू और दाग

अब चलते हैं फ्रिज की ओर। हफ्ते में एक बार फ्रिज खाली करके साफ कपड़े से पोंछिए, और अगर फ्रिज में बदबू आती है तो बदबू दूर करने के लिए एक कटोरी बेकिंग सोडा या नींबू का टुकड़ा रखिए। और फल सब्जियां या कोई भी चीज़ खराब हो गई है फ्रिज में तो उसको तुरंत निकाल देना चाहिए। माइक्रोवेव और मिक्सर तो सबके घर में होता है, तो माइक्रोवेव में पानी और नींबू का रस गर्म करके फिर उसे अंदर से साफ करना चाहिए तो वे एकदम चमक जाएगा। और मिक्सर जार में गुनगुना पानी या थोड़ा लिक्विड साबुन डालकर चलाने से भी जल्दी सफाई होती है। हम देखते हैं आमतौर किचन में जो गैस के पीछे टाइल्स होती है उस पर भी कई बार गंदगी जम जाती है, चिकनाई इकट्ठी हो जाती है, तो इसके लिए आप सिरके और गर्म पानी का उपयोग करें तो टाइल्स पर जो चिकनाई जमी हुई है वो साफ हो जाएगी। और अगर किचन में लकड़ी का फर्नीचर है, लकड़ी की अलमारी है, तो सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए और पेपर बिछा देना चाहिए तो नमी नहीं रहती है। और अगर कीड़े मकोड़ों से बचाव करना है तो किचन को हमेशा सूखा रखना चाहिए, डिब्बों को अच्छी तरह बंद करके रखना चाहिए। तेज पत्ता या लौंग रखने से भी कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो दूर हो जाते हैं। और साप्ताहिक वीकली हमें डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, मसालों के डिब्बे है, सेल्फ है, वो साफ करने चाहिए। और सिंक पाइप में जो मैंने अभी आपको बताया कि गर्म पानी और बेकिंग सोडा डाल दीजिए, और किचन में काम आने वाले जो कपड़े हैं, स्पंज है, उनको तो हमें नियमित रूप से धोना चाहिए, और मैं ये कहती हूँ हर 15 से 20 दिन में उन्हें बदल देना चाहिए। तो अगर हम ऐसी छोटी छोटी आदतें रखते हैं तो उसका बहुत अच्छा असर होगा, क्योंकि साफ किचन सिर्फ सुंदर ही नहीं दिखता बल्कि परिवार को स्वस्थ रखने के लिए भी किचन का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हम ठीक है कर लेंगे किचन की सफाई, बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज के रोज अगर हम थोड़ा थोड़ा किचन साफ करते रहते हैं तो किचन जो है वो एकदम चमकता हुआ रहेगा। और स्वच्छता रहने से हमारा जो शरीर है, क्योंकि हम किचन हमारा जो खाना है वो तो किचन में ही बनता है, तो खाना भी हाइजीन होगा और जो भी कीटाणु आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वो भी साफ हो जाएंगे। किचन में हम रोजमर्रा के जो काम करते हैं उसके लिए भी मैं आपको कुछ टिप्स लेकर आई हूँ आपके लिए। जैसे हरी सब्जियों को अगर ताज़ा रखना है तो उन्हें पेपर में लपेट कर फ्रिज में रखना चाहिए, उससे सब्जियाँ काफ़ी समय तक ताजी रहती है। और सेब काट कर रखते हैं ना तो वो काला पड़ जाता है, लेकिन अगर उसके ऊपर थोड़ा नींबू लगा दिया जाए तो वो काला नहीं पड़ेगा। आमतौर पर हम देखते हैं कई घरों में टोकरी के अंदर सब्जी रखने की जो टोकरी होती है उसमें आलू के साथ प्याज भी लोग रख देते हैं, तो नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे दोनों जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और एक बात और कि प्याज है, आलू है, ये फ्रीज में तो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। और स्वाद अगर बढ़ाना है तो दाल में आखिर में थोड़ा सा घी, भुना हुआ जीरा, सूखा पुदीना या सूखी हुई कसूरी मेथी है, थोड़ी सी हींग है, अगर हम ये डाल देना तो दाल का स्वाद बहुत बढ़िया हो जाता है सखियों। और चाय की बात करें तो चाय में इलायची, जायफल और जावित्री डाली जाए तो चाय में शानदार खुशबू आती है। आमतौर पर हम ग्रेवी की सब्जियां घर में बनाते हैं तो ग्रेवी कई बार पतली हो जाती है, तो ग्रेवी को अगर गाढ़ा बनाना है तो उसमें थोड़ा बेसन या काजू का पेस्ट हम डाल सकते हैं। और काजू का पेस्ट अगर आप नहीं डालना चाहती हैं तो आप बेसन या आपके लिए मूंगफली जो है सिकी हुई वो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, नहीं तो आप सूखी हुई जो ब्रेड होती है उसको भी उसका भी चूरा बनाकर डाल सकते हैं। जले हुए बर्तन में पानी और बेकिंग सोडा डालकर उबालना चाहिए, इससे सफाई आसान हो जाती है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो हम कुकर में जब उबालते हैं तो कुकर बहुत गंदा हो जाता है, तो इसके लिए आप पानी और बेकिंग सोडा डालकर उबालेंगे और उस पानी में ही एक कुकर का ढक्कन भी डाल दीजिए, सीटी भी डाल दीजिए, फिर पुराने ब्रश से उसको रगड़ कर साफ कर लीजिए तो कुकर आपका चमक उठेगा। और कुछ समय बचाने वाले भी टिप्स है, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख लीजिए, टमाटर की ग्रेवी आप उबाल कर टमाटर को छिलका उतार के ग्रेवी बना के फ्रिज में रख दीजिए तो हफ्ते भर तक वो भी रह जाएगी। और हफ्ते भर के मसाले की ग्रेवी अगर पहले से तैयार करके रखते हैं तो भी खाना जल्दी बनता है। और जब हम आटा गूंथते हैं तो कई लोगों की रोटी गर्म तो अच्छी लगती है लेकिन जब वो ठंडी हो जाती है ना तो एकदम पोकस टाइप हो जाती है। तो आटा जब आप गूंथते हैं तो जैसे थोड़ा सा नमक डालते हैं तो आप 2 चम्मच घी डाल दीजिए, थोड़ा सा दूध डाल दीजिए तो रोटियां काफ़ी नरम बनेगी। चावल तो आमतौर पर हमारे घर में बनते ही है, तो चावल बनाते समय कुछ बूंदें नींबू की डालनी चाहिए तो चावल खिले खिले बनेंगे। कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए धोने के बाद उसे अच्छी तरह से पोंछना चाहिए, सुखाना चाहिए तो वो काफ़ी कुरकुरी बनेगी। और पूड़ी के आटे में थोड़ी सी सूजी मिलाने से
पूरी ज़्यादा कुरकुरी बनती है। तो ऐसे कई टिप्स हैं किचन

जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो हम किचन की महारानी वैसे भी है, लेकिन नहीं है तो बन भी सकती है। ये तो हुई किचन की टिप्स की बात और किचन को साफ कैसे रखें। आगे इंतजार कर रहे हैं इस तड़कती भड़कती गर्मी से बचने के लिए कुछ ब्यूटी टिप्स, लेकिन आइए सुनते हैं पहले एक गाना।

तो सखियो, अपने वादे के अनुसार अब मैं आपको बताऊंगी इस तड़कती भड़कती गर्मी के सौंदर्य टिप्स। गर्मी के मौसम में त्वचा और बालों की सही देखभाल करने से आप ताजगी भरी और नेचुरल ग्लो पा सकते हैं। जैसे गर्मी में त्वचा की देखभाल के लिए खूब सारा पानी पीजिए। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी तो कम से कम पीना ही है। इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और त्वचा में भी चमक बनी रहती है। दिन में 2-3 बार चेहरा धोना चाहिए ताकि पसीना और धूल हट सके। नीम, एलोवेरा या खीरे वाला फेस वॉश अच्छा रहता है। बाहर निकलने से 20 मिनट पहले SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन जरूर लगाइए। चेहरे पर गुलाब जल या बर्फ रगड़ने से ताजगी मिलती है और ऑयलीनेस कम होती है। फिर भी अगर टैन है तो आप घर का बना फेस पैक लगा सकती है। बेसन, दही, हल्दी, खीरे का रस और एलोवेरा जेल, ये त्वचा को ठंडक और निखार देते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि अपने खान पान को अच्छा रखिए। खान से भी आप अपना ग्लो बढ़ा सकते हैं। तरबूज है, खीरा है, आम है, नारियल पानी ले सकते हैं। तली भुनी चीजें कम खाइए। नींबू पानी और छाछ भी शरीर को ठंडा रखते हैं। और बालों की देखभाल भी बहुत जरूरी है। जैसे बाल ढक कर बाहर जाना चाहिए क्योंकि धूप जो है वो बालों को रूखा बना देती है। हफ्ते में 2 बार तेल लगाना चाहिए। नारियल या हम आंवले के तेल का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि गर्मी में बाल जो है ना वो बेजान और फ्रीजी हो जाते हैं। तो बालों को सिल्की, मुलायम और चमकदार रखने के लिए हफ्ते में 2 बार हल्का गुनगुना नारियल या बादाम का तेल लगाइए। इससे बालों को नमी मिलती है और रूखापन भी कम होता है। और गर्मी में बहुत ज़्यादा केमिकल वाले जो शैम्पू है वो बालों को ड्राई बना सकते हैं। इसलिए एलोवेरा, आर्गन ऑयल या हर्बल शैम्पू बेहतर रहते हैं। और हर वॉश के बाद में हल्का कंडीशनर तो लगाना ही चाहिए क्योंकि ये बालों को स्मूथ और मैनेजेबल बनाता है। अगर आप बाहर निकलते हैं तो बाहर जाते समय दुपट्टा, टोपी या स्कार्फ जरूर लगाइए क्योंकि तेज धूप बालों की जो प्राकृतिक चमक है उसको छीन लेती है। हफ्ते में 1 बार आप हेयर मास्क, घरेलू हेयर मास्क लगा सकते हैं। जैसे दही और एलोवेरा जेल को मिला के, केले और शहद को मिलाकर, अंडा और नारियल तेल जो है उसको भी मिलाकर लगा सकते हैं। 20 मिनट लगाकर इनमें से कोई भी एक पैक आप लगाइए और 20 मिनट लगाकर रखिए, बाद में धो लीजिए। बहुत गर्म पानी से बालों को नहीं धोना चाहिए और आखिरी जो रिंस है वो ठंडे या सामान्य पानी से करना चाहिए। और रोज़ शैम्पू करने से भी हमें बचना चाहिए। खान पान यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है। नारियल पानी, खीरा, तरबूज, सूखे मेवे, हरी सब्जियाँ, इन सबको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और गीले बालों में जोर से कंघी नहीं करनी चाहिए। माइक्रोफाइबर तौलिया या सूती कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। और सीरम की 2-3 बूंदे बालों के सिर पर लगानी चाहिए। चावल का पानी जो निकलता है, अगर राइस वाटर, उसको बालों में 10 मिनट लगाकर धोने से भी बाल काफ़ी मुलायम और चमकदार बनते हैं। तो हम ऐसे जो घरेलू तरीके हैं उनसे हम अपने बालों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। और गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी में कपड़े जो पहनते हैं वो सूती और हल्के होने चाहिए। कॉटन के कपड़े सही रहते हैं और हल्के कलर जो है उनका हम अगर उपयोग करें तो थोड़ा सही रहेगा। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से पसीना भी आता है और रैशेज जो है वो भी बढ़ जाते हैं। और मैं देखती हूँ कि हमारी कई बहनें गर्मी में ये इस बात से परेशान रहती है कि रंग जो है वो काला पड़ गया है, टैन ज़्यादा हो गई है हाथों पर या चेहरे पर। तो टमाटर का रस लगाने से टैन हटाने में काफ़ी मदद मिलती है। और आप ठंडा दूध जो होता है उसको भी कॉटन से त्वचा पर लगा सकते हैं, उससे भी त्वचा मुलायम होगी। और रात को सोते समय सबसे अच्छा उपाय आपको बता दूँ, एलोवेरा जेल को लगाइए। इससे स्किन काफ़ी शांत रहेगी। और पर्याप्त नींद लीजिए, पसीना आने पर चेहरा साफ कीजिए, ज़्यादा मेकअप से बचिए। हल्का मेकअप आप गर्मी में कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम किचन की महारानी तो बन ही सकती है लेकिन सौंदर्य की मल्लिका भी बन सकती है। लेकिन अब घड़ी ने मुझे इशारा कर दिया है कि अब आपसे विदा होने का समय आ चुका है। लेकिन एक वादा, एक इरादा, हम जल्द मिलेंगे और ठेरों बातें करेंगे। तब तक हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार और प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मूमल। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे पहले अंग्रेजी और फिर हिंदी में समाचार।

0: मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे.
1: Also see a result from that.
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है. दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं. साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन.
3: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए. ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं. नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की. श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है. दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की. वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए. बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया. इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है. दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया. प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया.
4: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए. इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है. इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं.
3: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है. भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता. श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही. कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे. आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है.
5: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है. AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे.
3: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया. वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5,00,000 लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे. श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं. मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है. इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी. एक रिपोर्ट.
6: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है. सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है. स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है.

0: सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा है। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

0: फिल्म कही गीत आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर के युगल सुरों में, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई गांवों में चली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

है अगन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए।

0: गुलबदन ऐ गुलबदन, फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज।
1: प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में फिल्म थी गंगा की लहरें। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: क्यों?
1: इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों।
2: आप सुन रहे थे नजराना फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में, राजन कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था।

है हसी चेहरा है सुभान अल्लाह हसी चेहरा ये मस्ताना अदाए खुदा महफूज रखे हर बला से तुम्हें देखा है तो दिल बोला है तुम्हें देखा तो दिल बोला कि तुमको तुम दुआए खुदा महफूज रखे हर बला से।

जिसकी वो तस्वीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम। कमर पतली है नजर बिजली है, कमर पतली नजर बिजली है, जुल्फें या घटाए खुदा महफूज रखे हर बला से हर बला से। सुभान अल्लाह हसी चेहरा ये मस्ताना अदाए, खुदा महफूज।

0: किसकी किस्मत में है मुखड़ा चांद सा ये, न जाने किसके घर चमके का टुकड़ा चांद सा ये, न जाने किसके घर चमके का टुकड़ा चांद सा ये। इजाजत हो है तो फिर हम भी है, इजाजत हो तो फिर हम भी मुकद्दर आजमाए, खुदा महफूज रखे हर बला से सुभान अल्लाह हसीन चेहरा ये मस्ताना अदाए, खुदा महफूज रखे हर बला से
1: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया मोहम्मद रफी ने। एसएच बिहारी का लिखा गीत आपने सुना, फिल्म थी कश्मीर की गली।

0: मत तेरा शबाब ऐ जाने चमन।
1: महेंद्र कपूर की आवाज में अनमोल मोती फिल्म का ये गीत था, राजन कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था, और यही थी सदाबहार नवमी कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस खुशी पलों में।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। हो चला है इस कार्यक्रम का वक्त। आपके ढेर पत्र हम तक पहुंचे हैं श्रोताओ, और पहुंच भी रहे हैं, जिनमें आपके प्यारे प्यारे से नखमे हैं। आपके कुछ इन्हीं सरगमी गीतों से हमने सजाया है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। तो सुनिए, कहीं ये आपकी पसंद का गीत तो नहीं।

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलो, नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक ने।

के सदके। हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके।

क्रिसमस से जो हुआ है उस दीदार के सदके, क्रिसमस से जो हुआ है उस दीदार के सदके, उस

0: नजर लहरा रही है, जेब में मस्ती दिखाई है।
1: दोबारा देखने के शौक ने हलचल मचाई है, दोबारा देखने के शौक ने हलचल मचाई।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिर लुधियानवी की बोलों को सुर में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे, और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी और अभिजीत गवाणकर राही भी यहीं से सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाणकर की ये फरमाइश थी। मंचा गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी की बोल है खयाम का संगीत।

0: तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें,
1: नजारे हम क्या।
2: इस गीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेड़ तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आढ़िया, सौभाग्यवती भारती आढ़िया, पारस पायल, श्वेता आढ़िया और उर्वी बेन आढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहेगी।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओं, लेकिन अपना अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहां से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

पाऊं जगे बाते होंगे किसी के दिल बगा गुजरी ये वो ही जा

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। राजन कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभू दयाल खट्टर, विमला देवी और

जा खटक और जिला अमरावती प्रवीण नगर से इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्य गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मंच है गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओ, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमें शामिल किए आज के मंच है गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतजार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मंच है गीत कार्यक्रम से आप दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

ये है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। शकुंतला रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
2: जी, अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा। अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप,
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं। आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
2: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है। रनिवास की इतनी रानियों के रहते
0: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
2: हम निश्चिंत हुई आर्य।
4: देख तो वो मृगछाना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा।

0: फिर
1: हाँ चलो इसे इसकी माँ के पास पहुँचाए।
0: अरे अरे मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला,
1: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
0: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुया, चली गई।
3: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक वहाँ उपस्थित है। कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा चलूं या?
0: नहीं, नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
3: पाप?
0: ऊंचे लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
3: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
0: अब जाने भी दीजिए मुझे।
3: क्यों जाने दूं तुम्हें?
0: पुरवंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
3: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
0: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूँ आर्य, प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
3: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
0: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
3: क्या उलझन है तुम्हारी, बताओ तो।
0: अब कैसे बताऊं आर्य, पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो?
3: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला, पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो पूरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
0: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
3: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
0: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। किंतु आप मेरा हाथ तो छोड़ो।
3: अभी नहीं छोड़ूंगा।
0: तो फिर कब?
3: मुझ प्यासे भावरे को तुम्हारी अधर पुष्प का रस मिल
0: जाए। ये क्या कर रही हैं आप?
4: अरे चपली, अब अपने प्रिय से विदा ले, रात आ पहुंची है।
0: ओह लगता है मुझे देखने के लिए आर्या गौतम इधर ही आ रही है। आप इस वृक्ष की ओट में चिप जाइए।
3: ठीक है।
4: शकुंतला अब कैसी हो बेटी, शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
0: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ताप भी कुछ कम हो गया है।
4: लो इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
0: अच्छा
4: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
0: हाँ चलो माँ।
4: चलना ही होगा, अब पछताने से रोने कलपने से क्या होता है। मन जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बनी रहे, अब तो अतृप्ति की इस पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। ये संताप हरने वाली लता कुंज विहार के लिए बहुत शीघ्र में फिर उपस्थित होंगी।

0: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी चूम नहीं सका। अब उस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर गिरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
1: बचाइए, बचाइए राजन, बचाइए। यहाँ वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर लड़ने लगे हैं। रघुवंश की पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
2: तो इन राक्षसों ने फिर से उठा लिया, मैं अभी जा रहा हूँ।

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं?
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया, ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कर्ण को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और सहयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई।
1: नहीं, तेरा कहना सही है अनुसुया, पिता कर्ण भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है? कुटिया में कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।
2: हरि ओम शुभदा। अतिथि का मान करने वाली संसद, मैं तुझे साफ देखता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसे तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा। वो तुझे भूल जाएगा। वो तुझे भूल जाएगा।
1: हाय, ये क्या अनर्थ हो गया। लगता है अपने बेसुध में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे, ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
0: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटाना। तब तक मैं अंधे का जल लेकर आती हूँ। जाओ, जल्दी जाओ।
1: हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना। अनुसुया
0: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
1: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं?
0: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
1: कोप तो शांत नहीं हुआ अनुसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
0: तो
1: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
0: फिर
1: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
0: चलो, इतना ही पर्याप्त है। उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
1: आओ अनुसुया, अब देव पूजन का काम पूरा कर ले।
0: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए। बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
1: हाँ अनुसुया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

0: ये तो दिन निकल आया। आह कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ये अनुसुया उठ ना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
2: मैं सोई कहा हूँ प्रियंवदा।
1: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
2: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
1: क्यों, ऐसा क्या हो गया?

0: किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
1: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी?
0: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
1: तू ही तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
0: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कर्ण को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
1: पिता कर्ण को इन सब बातों का पता चल भी गया और भी अप्रसन्न भी नहीं हुए।
0: सच?
1: हाँ,
0: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
1: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कर्ण वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
0: आशीर्वाद दे रहे थे?
1: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
0: हे भगवान!
1: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
0: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा, पिता कण्व को इस घटना का पता कैसे चला?
1: आकाशवाणी से।
0: आकाशवाणी से?
1: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्व जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे, आकाशवाणी हुई।
2: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगजित पौरव तेज निवास।
0: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली। तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
3: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
0: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
3: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
4: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
3: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
0: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देखता है श्रेया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, पगली, ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है?
2: नहीं शकुंतला, नहीं,
0: इस तरह तो तू हमें भी।
1: अरे, ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
0: कितने सुंदर, कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र, ये सलोनी महावर, ये आकर्षक आभूषण।
1: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
1: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
0: माँ, माँ,
1: प्रियंवदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो।

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति की धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तार कर्ण इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।

0: प्रीति, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद ही वरदान है भगवान।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

0: शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे भरे ताल हो। धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष। इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता। और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।
1: प्रियंवदा, मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तपोवन से बिछुड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला। तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो, उन्होंने नाचना छोड़ दिया है। कैसे चुपचाप खड़ी है। हिरणियां भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही है। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं। बाबा, बाबा, बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिलूं। बाबा।
2: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
1: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो, आम के वृक्ष के अनुराग ने अपनी बहन को भूलने नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या अनुसुईया, मेरी सखी, तुम इसका ध्यान रखना।
2: बेटी, तुम निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप पर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
1: ये मेरा आंचल कौन खींच रहा है? ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।

0: मेरे लाड ले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख, मेरी जगह तेरी देखभाल बाबा करेंगे।
1: सरोवर का तट आ गया है बाबू।
2: हाँ शरंगा, पूर्वजों ने कहा है कि परिजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
1: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
2: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग। पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सद्व्यवहार रखना, और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
0: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा। प्रियमना और शकुंतला हमसे गलत में ना हो सकी, तो क्या तुम लोग भी यही सुनाट जाओगी।
2: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहाँ रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
0: अनसुया शकुंतला, तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी।
2: इतनी अधीर रहो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर साज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां
0: बनेगी। राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना, और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी। ये तुम लोग कैसे बातें कर रही हो, डरने की कोई बात नहीं शकुंतला, हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं, किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
1: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
2: हाँ शरंगा, अब तुम लोगों को जाना ही चाहिए, जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक इस समूची पृथ्वी की सौत बनकर राज करो, और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ। यहाँ के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। कन्या सचमुच पराया धन होती है। शकुंतला को आज उसके पति गृह भेजकर मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। किसी की धरोहर को सकुशल लौटा देने में कितना संतोष है।
3: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती विचारा।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंदा।
0: 1985 जमाना।
1: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
2: क्या।
0: 1993 फिल्म

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उपलब्ध माने तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे पुत्र साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
0: जी जी जी।
1: हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है क्योंकि जा चुके जो। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
0: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
0: पिछले एपिसोड में आपने सुना, रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
1: बसेरा का भी इसी तरह सा भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई
0: हाँ
1: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाद का थॉट था
0: ना, मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में त्रिशूल था ना,
1: जी जी
0: सारी फिल्म में त्रिशूल में बैठा होता था, और सब हर शूटिंग में स्टोरी फिल्म में होते थे, शूटिंग में मुझे देखते हुए काम करता हूँ कोई ऐसा, फिर जया जी के साथ मैंने जो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर की, तो अलबत्ता उन्होंने मुझे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूं तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो दो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते हो यश चोपड़ा के असिस्टेंट, आप दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटी में जाएंगी वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की उस बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक चली थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेट और एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम मैं करूंगा आपकी पिक्चर, कभी ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन वेलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी जी जी,
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया, फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे ढूंढते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था,
1: ओके ओके
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूं लेकिन उसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर था राइटर
1: जी जी जी,
0: उन्हीं का नाम है राइटर है, राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम है, तो उन्होंने काम मैं तुम्हारे साथ हूं जो भी है, तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है सागर सरदी साहब से कहे करने के लिए, बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर ले, तो मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा के पिक्चर और आप लिखे अगर तो ये स्टोरी आइडिया है, तो उन्होंने सुनो ने कहा ये आठ फिल्म का आइडिया है,
1: अच्छा
0: हाँ जब ओरिजिनल तो, बाकी कहानी आप राखी निकाल दो बाकी जो है कम आया उसमें, तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं कुछ और डालते हैं, तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे तीन चार साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले, और इंस्टिट्यूटली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया ऐसी कोई औरत, और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की और 20 साल का लड़का
1: हाँ
0: ये करे, तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी जो उनका ही करना है ये सब, तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का,
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त,
0: रिस्की था
1: जी
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए, तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं,
1: अरे बापरे
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा।

0: आदर करो मैं राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यजी ने मुझसे आयशा से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग है, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी है उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं कर सकता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा कह रहे बोला यार ये तो है देख ले तू, तो वो पोर्शन बिगिनिंग का मैंने काट दिया शुरू में जो सोच रहे थे, और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सचिन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि वो इस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मुझे राखी जी ने ऐसे पूछा शूटिंग के दौरान यह जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ
1: फिर सुनाया,
0: फिर उन्होंने कहा तो बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना,
1: हाँ।
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा को छोटा है फला को नहीं, मीटर रूम अच्छा नहीं, कभी कोई बात नहीं थी
1: जी जी जी।
0: इस तरह से काम करती थी, बहुत डिवोटेडली काम किया। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ही करूँ।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: और असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई?
1: हाँ।
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था,
1: पहली फिल्म थी आपकी,
0: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस सेंस से, वो तो उस वक्त तक आज भी और उस वक्त भी जिसको नहीं करना उन्होंने जा भाई दूसरे के पास, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब था इस फिल्म की हो गया पिक्चर जो होना था, 15 अगस्त चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ कि तरह को बुरा ना लगे हम पिक्चर उतारने लगे, और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे, वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है जी, जैसा आपको लगे उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन। अगली पिक्चर जो थी मेरे शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन जी रिलीज कर दी।

0: क्या मौसम है, चल रही
1: है वाह, क्या बात, क्या बात, क्या अच्छा कह रहे। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूं कि दो पेज की कहानी का वो था, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यशजी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए।
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यशजी के साथ था। तो जब हम जाप के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिक बनूंगा और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा।
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे, ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंट मिलती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली
1: भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप,
0: कुंवारा बाप।

0: आपको अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया मैंने जैसे चीज कहा ये जी तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ तो उधर और भी सब जो पहले दिन उनके साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा सारा मुश्किल होता है तुझे बट एनी वे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी तो मैं उससे मिलने गया तो बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया करेगा पिक्चर बोला हाँ बिल्कुल मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी और यश जी के यहाँ जाकर सेटिंग करनी पड़ेगी जिंदा अपार्टमेंट में पालेन पे बोला करूंगा और उसने पिक्चर ले ली और उसने बहुत मेहनत की बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ जबरदस्त म्यूजिक बना
1: बहुत अच्छी गाने चले
0: बहुत नहीं फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास
1: अच्छा
0: करने के लिए तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है गाने तेरी लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूंगा
1: ओ
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने यश जी ने ओके ओके कर दिया था वो कुछ हुआ था ऐसा मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन और दत्ता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे उनकी कोई दिल्ली की सहेली है दत्ता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल तो उन्होंने कर दिया अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिलनी थी पिक्चर तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी
1: ओ
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म एक बनाई है मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब
1: बिल्कुल उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया दोनों के साथ किया था तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर
1: बड़े अच्छे गाने बने आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है
0: भाई इसमें सारे गाने अच्छे
1: जी

दिल है चला दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए, चला दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया।

0: सुनते ये प्यार की
1: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
2: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
1: जी,
2: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो जोम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसर ने कह दिया था क्या मेरे साथ करो पिक्चर, ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो। हुआ ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उनका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, साइन में रहता था, कोई आते जाते जैसे कि यहाँ जाना है अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय में पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसे का थॉट, वो भी थॉट ही बोलता था, थॉट ही क्योंकि अमिताभ जी थॉट बोलते थे, थॉट ही कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर, मेरी ये कंप्लीट हो तू शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा 13 साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अभी, वो करे तू भी कर, एक पिक्चर दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा, तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेज दे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है कि हमें चला करो ऐसा होता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली, उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
1: मराठी,
2: मराठी में वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला जी, वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
1: जी,
2: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया, तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हम याद थे फटाफट करते थे
1: जी,
2: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को, वो 6 महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस 1 महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए।
1: यस
2: ये था रमेश बल ने का।

0: मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, एक महीने बाद आऊंगा, तेरी भी छुट्टी होनी थी। रपट हो गया। सोनू के घर ही सिटिंग कर रहे थे और फिर वो राइटर साहब ने कहा, भाई मैं आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी है, ये है, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
1: बाबा
0: उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
1: पुरानी दोस्ती है ही।
0: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी, गुलजार पापा
1: जी,
0: सागर को सागर पापा बुलाता हूँ। गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे, आपका और आर डी बर्मन का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप।
1: बाबा
0: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है। उनका बेटा मैं अजीब सा लगेगा, डायलॉग एंड मेमोरी करना है तो स्क्रीन प्ले, स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगे कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ। उन्होंने नहीं सुना, तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया। तो उनका नहीं, तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था, मद्रास की फिल्मों की तरफ ज्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ। और वो मेरी लाइन थी, उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, और गाने लिखे, तो हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं।
1: हाँ, ये कौन है?
0: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे। अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है, कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन।
1: ओके,
0: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था, उनका उनकी फिल्में देख लेख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो।
1: उन्होंने ही बोला?
0: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा का कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को तो। बोले मैं अभी फोन करती हूँ। फोन लगाया, रेखा ने कहा मैं यहाँ व्यू पार्लर स्क्रीन में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
1: हाँ।
0: तो रमेश को मेरे पास भेजो। तो मुझे एक आध बात पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे, पुराने किसी के देख रही थी और कुछ हमारी फिल्मों की एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा ऐसा सुना लो लंच खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं खा के आऊँ। अच्छा दो मिनट में मैं खा, फटाफट खाना खा आ जाओ थोड़ा। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरव्यू हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी। मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
1: डन हो गया।
0: इंटरव्यू तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: मैंने आके रमेश भाई को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया, रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, है। अब सब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा? शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे, हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है वो ऋषि, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक लिस्टेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया, सर एक प्रॉब्लम है बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चर उनके सामने, वो मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरे सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपका आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा थोड़ा घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साथ हार्कनेस रोड पहुंच गया, थोड़ा उनके फ्लैट पे उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना सिर्फ मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में। चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी। रोल छोटा था, 400 BC की। मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी। नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
1: हाँ।
0: गेट में गाड़ी रुकी, उतर जा, मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ।
1: अरे बाप रे,
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊं लोग कहें शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया।
1: हाँ।
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा
1: जी।
0: और ये बात में शादी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया।
1: ये दूसरा आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी में ये, मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है।
1: हाँ।
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आपका तो इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके?
1: हाँ।
0: सामने?
1: हाँ।
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो आ जाओ घर पे, आ जाओ सुबह नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे।
0: और फिर करें, अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, तो ना कर देंगे। करूंगा तेरे, ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहां पे थे, और मुझे उन्होंने कहा वहां पहुंचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूंगा मैं।
1: बसेरा के लिए हाँ हो गया?
0: हाँ होगी। और मतलब ये है कि बेटे तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा, तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया, वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा डेटे, जनवरी में करो, दिसंबर जनवरी में, तो ये कुछ अप्रैल मई जून था ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है कि ठीक है रॉडी, वैसे भी तू एक सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों, तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ रेखा के साथ बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर ये हो गया। ऐसे मतलब क्या कब जोर दो चार चीजें बनती है, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो है
1: नहीं बहुत अच्छे रहते मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उसका क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, हमको ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया स्पेशल, डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूंगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूंगा। बैठे हुए सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती है, सेट पे आओ शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करने शुरू कर दी।
0: वाह वाह,
1: चाहे ट्यूजडे है चाहे सैटरडे है, या कोई गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड, ट्यूजडे नहीं करूंगा सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है
0: जी जी जी जी।
1: अलबत्ता कब से मैं आज तक रोज शेव करता
0: हूँ।
1: और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहां आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट यहाँ पे जाते थे, वहां पहले शिफ्ट करते थे।
0: अच्छा, तीन लुक के लिए
1: एकदम।
0: वाह वाह वाह,
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट करनी शुरू की, वो पिक्चर जब कहानी सुनी रहते यश चोपड़ा जी की पहली बार, तो मैं मिलने जाता था उसको, और तो कहता यार रोल छोटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
0: जी,
1: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा
0: जी।
1: मैंने कहा ये शर्त जो मंजूर है, और वो आया आउटडोर में और उसने वहां शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोजमुंग में सारे दोस्त जो बैठते हैं, यहाँ ये भी आके रोजमुंग बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहां पे, अपना गुलशन बाबरा।

0: रमेश बैल सब ये सब, और बातचीत बातचीत करने में कुछ बोलते बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डबू ने बोला क्या, तो तीन के लिए, तीन दिन के लिए आप 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे फिल्म दिखा ऐसे नहीं ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा कर मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही। फिर आउटडोर बहुत सीन वीन सब मैं रीडिंग करवाता था, सब करवाता था। और एंड तक कुछ नहीं, जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूंगा तेरी पिक्चर।
1: बाबा
0: वही बोल दिया। और वो दोस्ती जो थी, जब मैं पालील पे आया तो साथ वाले बंगले में था, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था। शाम को अकेला बैठा है, वही क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं, बियर पिएगा। वहां पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहां बार थी ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बार बर्फ गिरी हुई है, और मैं करके आया ठंडी में कांप रहा हूं, साले ये मर जाएगा कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कौन एक्टिंग? नहीं मैं शराब नहीं पीता। अरे ये शराब नहीं होती। तो यश जी ने पपी किसी फिल्म में ये सीन भी डाला हुआ है।
1: अच्छा
0: यश जी को मैंने सुनाया था कोनेक शराब नहीं होती। तो बोले उसने मुझे कोनेक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया सर। फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ। तो वो बुला लेता था बियर पीनी है, तो मैं गर्म बियर पीता हूँ।
1: अच्छा।

0: जी। अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच की जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: धारा में आज
2: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।
3: अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से सुन रहे थे। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

युवा साथी सुन रहे हैं युववाणी। मैं अर्चना आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे आयुष्मान भारत, छुट्टियों का करें सदुपयोग, स्वाध्याय का महत्व, जल स्रोतों का संरक्षण आवश्यक और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के बारे में। तो हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं आयुष्मान भारत से। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान भारत जो कि भारत सरकार की एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर परिवारों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसके मुख्य रूप से दो भाग है, एक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, और आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में काम करते हैं। इस योजना के मुख्य लाभ की बात करते हैं तो इसमें 5 लाख का बीमा है वो मिलता है, यानी कि हर पात्र परिवार को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है, और इसमें कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध है, यानी कि अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज पूरी तरह से मुफ्त और कागज रहित होता है। इसकी कोई सीमा नहीं, यानी कि परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई भी पाबंदी नहीं है। पहले दिन से कवरेज की बात करते हैं तो पुरानी बीमारियां भी योजना से जुड़ने के पहले दिन से ही कवर हो जाती है, और भर्ती होने से 3 दिन पहले और छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक का खर्च, दवाइयां और जांच भी इसमें शामिल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये देश भर में मान्य है, यानी कि देश के किसी भी राज्य के सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया जा सकता है। इसकी यानी कि इस योजना के लिए अगर पात्रता की बात करते हैं तो यह पात्रता 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकानों में रहने वाले भूमिहीन मजदूर, महिला मुखिया वाले परिवार या ST SC परिवार इसमें शामिल है। शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो कचरा उठाने वाले, भिखारी, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले, निर्माण मजदूर और कारीगर इसमें शामिल है। विशेष विस्तार में सभी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस योजना में शामिल है। वरिष्ठ नागरिक में यानी कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग इस योजना के पात्र हैं। उन्हें आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड के तहत 5 लाख का अलग से सालाना कवर मिलता है, चाहे उनकी पारिवारिक आय कुछ भी हो। तो श्रोताओं, ये जो योजना है, इस योजना में जो विशेषकर है वो गरीब तबका है, और जो महिलाएं हैं, आशा सहयोगिनी है, या हम 70 वर्ष के जो वयोवृद्ध हैं उनको देखते हैं तो विशेषकर है वो प्रमुख सभी है वो तबकों को इसमें शामिल कर लिया गया है। और इस योजना के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये एक जो मुख्य उद्देश्य लेकर कार्य करती है जो कि गरीब और कमजोर परिवारों को मुफ्त और बेहतर जो स्वास्थ्य सेवाएं है वो प्रदान करती है। और अगर हमें इस योजना के लिए है वो आवेदन करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि सबसे पहले इसकी जो आधिकारिक NHA बेनिफिशियरी जो पोर्टल है वहाँ पर आपको जाना होगा। वहाँ पर आप लॉगिन करके बेनिफिशियरी विकल्प चुने, अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP दर्ज करें, अपना राज्य, योजना का नाम चुने और अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड या नाम से भी आप खोज सकते हैं। EKYC करें, यदि आपका नाम सूची में है तो आधार कार्ड के जरिए EKYC यानी सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद आप अपना आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया आप अपने फोन या गूगल प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इस योजना में है वो कौन सी है वो बीमारियां शामिल है

उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसे इस योजना में जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी यानी कि कैंसर से संबंधित जो गंभीर बीमारी है वो भी इसमें शामिल है। जो दिल की बीमारी यानी कि बाईपास सर्जरी, स्टेंट लगाना ये भी इसमें है, वो शामिल है। किडनी यानी कि डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट और घुटने और कूल्हे का प्रत्यारोपण, नवजात शिशु के इलाज से जुड़ी विशेष पैकेज है वो इसमें शामिल है। और अगर हम इस योजना में शामिल नहीं है उसकी बात करते हैं तो ओपीडी का खर्च यानी कि डॉक्टर को केवल हम जो आप अस्पताल में भर्ती नहीं होते हैं तो आपकी जो डॉक्टर की फीस है वो इसमें शामिल नहीं होगी। कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी वो भी इसमें शामिल नहीं होगी। अंग प्रत्यारोपण यानी कि कुछ विशेष और कुछ बहुत है वो महंगे जो मामले होते हैं उसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ये शामिल नहीं होगा। और फर्टिलिटी का इलाज है वो भी इसमें शामिल नहीं है। और इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है, जैसे आधार कार्ड वो तो सबसे जरूरी है, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर आपके खुद के ये भी होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य संबंधी योजना है जो कि विशेषकर गरीब और कमजोर परिवारों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बधाई हो बधाई से अलका याग्निक और शान की आवाज में ये प्यारा संगीत। अब हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो कि 17 मई को हर साल मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का जो उद्देश्य है वो उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थितियों को रोकने के लिए शीघ्र निदान और नियमित निगरानी को बढ़ावा देना है। अगर हम 2026 के लिए इसकी वैश्विक थीम की बात करते हैं तो उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जाँच करें, इस मूक हत्यारे को हराए, ये इस साल की थीम है। जी हाँ दोस्तों, यह एक खामोश हत्यारा है, यानी कि उच्च रक्तचाप अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्षण के विकसित होता है, इसलिए प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए नियमित परीक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। और विश्व स्तर पर अनुमानित 1.4 अरब लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, लेकिन इनमें से केवल 1/4 लोगों का ही ये पर्याप्त रूप से नियंत्रित रहता है। और स्वास्थ्य पेशेवर चेतावनी दे रहे हैं कि गतिहीन जीवन शैली, खराब खानपान की आदतें और बढ़ते तनाव के स्तर के कारण उच्च रक्तचाप है वो युवा वयस्कों को, विशेषकर 30 और 40 वर्ष की आयु के लोगों को यह तेजी से वर्तमान में प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जो लोगों की जो जीवन शैली है, जो रहन सहन है, खान पान है, ये सारी है वो आजकल के समय में है वो बहुत ही बीमारियों को है वो न्योता देने वाले है, क्योंकि ना तो हमारा जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित है, क्योंकि उठने का समय या हमारे जीवन में व्यायाम है उसके लिए कोई जगह नहीं है, और हमारा खान पान है वो भी जैसे जंक फूड और हम लेते हैं, तो उससे जो 30-40 वर्ष के जो युवा है विशेषकर वो आजकल ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके हम छिपे हुए जो कारण है यानी हिडन रिस्क फैक्टर्स देखते हैं तो उम्र और आनुवंशिकी के अलावा चीजें कुछ ऐसी है जो बीपी को बढ़ाती है, यानी कि कम नींद, रोजाना 6 घंटे से कम सोने से बीपी है वो बढ़ सकता है, और पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से भी यह बढ़ता है, क्योंकि दर्द निवारक दवाई है वो बीपी ही बढ़ाती है। ज्यादा कैफीन यानी कि बहुत अधिक चाय या कॉफी पीना भी वो बीपी को बढ़ाने का काम करता है, और पैक्ड फूड जैसे चिप्स है, सॉस है, डिब्बा बंद जो खानों में छिपा हुआ सोडियम यानी कि जो नमक होता है वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर आप घर पर भी अपनी बीपी है वो नापने की है वो कोशिश कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो जांच से पहले 5 मिनट है वो आराम से बैठे, और जांच के 30 मिनट पहले चाय, कॉफ़ी या जो भी

इमरजेंसी लग रही है, यानी कि ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाइपर है, वो टेंशन हो रहा है, तो आपकी बीपी अगर अचानक 120 या 180 से ऊपर चला जाए, तो साथ में ये लक्षण आपको दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, यानी कि तेज सिर दर्द हो रहा है, धुंधला दिख रहा है, सीने में तेज दर्द हो रहा है या भारीपन सा लग रहा है, शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी या सुन्नता लग रही है, तो ऐसे में आपको तुरंत है वो डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये हाइपर टेंशन है वो आपको कहीं ना कहीं है वो प्रभावित कर सकती है। तो अगर आप अपने खान पान को सही रखेंगे या दिनचर्या है उसको अच्छा करेंगे, तो आप इस बीमारी है उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने जो खाने में है वो हेल्दी सॉल्ट है वो लेना होगा, यानी कि नमक के कई और विकल्प भी आपके सामने हैं। तो अगर खाने में नमक कम करना मुश्किल लग रहा है, तो आप अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए नींबू का रस, यानी कि सब्जी या सलाद पर नींबू है वो उसका रस डाल सकते हैं, काली मिर्च, जीरा पाउडर, अमचूर का उपयोग है वो कर सकते हैं, हर्ब्स में आप धनिया, पुदीना, कस्तूरी मेथी है उससे भी खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं, और लहसुन और अदरक ये न केवल स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि बीपी भी कम करते हैं। तो ऐसे में आप अपने जो खाने की जो आदतें हैं उसको बदल कर भी आप इस हाइपरटेंशन है उससे बच सकते हैं। और बीपी कम करने वाले कई ऐसे सुपर फूड्स हैं जिसको अपना कर भी आप है वो इससे बच सकते हैं, जैसे केला है वो पोटेशियम का सबसे आसान स्रोत है, नारियल पानी जो कि शरीर को हाइड्रेट रखता है और बीपी को कंट्रोल करता है, पालक मेथी जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो भी अगर आप अपने जीवन शैली में शामिल करते हैं, खान पान में शामिल करते हैं, तो वो भी आपको कई बीमारियों से बचाती है, दही है जो आपको कैल्शियम पोटेशियम दोनों है वो प्रदान करता है। तो ऐसे में आप अपने खान पान की आदतें अगर सुधारते हैं, पैक्ड जो भोजन है वो नहीं लेते हैं, और मार्केट का जो इस तरीके से यानी कि नमक का उपयोग किया हुआ जो खाना है अगर आप नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य का भी संबंध इससे है, यानी कि गुस्सा और तनाव सीधे तौर पर बीपी को बढ़ाते हैं, तो इसे काबू करने के लिए आप ब्रीदिंग ले सकते हैं, यानी कि थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि आपको तनाव हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो 2 मिनट अपनी सांस है उसको रोककर आप कंटिन्यू है वो गहरी सांस ले, धीरे धीरे सांस को छोड़े, और ऐसी जो ये क्रिया है वो आप 4 सेकंड सांस ले, फिर 7 सेकंड इसको रोके, फिर 8 सेकंड इसको धीरे धीरे छोड़े, तो ये जो क्रिया है वो भी आपको ब्रीदिंग की क्रिया है भी आपको इस बीपी से कंट्रोल है वो ला सकती है, और आपको जो मानसिक तनाव है या जो गुस्सा आ रहा है वो उस समय शांत हो जाएगा। हार्ट टू हार्ट टॉक, यानी कि दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताए, बातें शेयर करें, क्योंकि जब आप अपने मन में कहीं भारीपन रखते हैं, बातों का भार रखते हैं, तो उससे भी आपका तनाव बढ़ता है या आपको टेंशन होती है, या कई ऐसी जो मन में छिपी हुई जो बातें हैं वो आपको हाइपरटेंशन की ओर ले जाती है। और अपना स्क्रीन टाइम कम करें, यानी कि सोने से 1 घंटे पहले फोन या टीवी देखना बंद कर दें, क्योंकि आजकल जो आम समस्या है ये जो बीपी की जो हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे युवा हो या उससे बड़ी उम्र के हो, वो सभी उनका स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, रात को देर रात तक है वो स्क्रीन टाइम की वजह से है वो नींद पर्याप्त नहीं हो पाती है, या जो नींद की आदत है उसमें बदलाव हो जाता है, जिससे कि जो हाइपरटेंशन है उसके मरीज है वो आजकल ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ये ही विशेषकर आजकल हम देखते हैं आधुनिक समय में, एक तो खान पान है, दूसरा ये स्क्रीन टाइम है, और लोगों की जो दिनचर्या है, खान पान है, इसी के कारण है ये हो रहा है। तो कुछ लोगों का बीपी सिर्फ डॉक्टर के क्लिनिक में देख कर या डर या घबराहट से भी बढ़ जाता है, जबकि घर पर सामान्य रहता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति के अंदर ही कुछ ऐसी है वो कह सकते हैं कि मेंटेलिटी या वाइट कोट सिंड्रोम होते हैं, जो सिर्फ है वो डॉक्टर को देख कर या जो कह सकते हैं कि अस्पताल में जाने से ही वो बढ़ जाते हैं। और जो मास्क्ड हाइपरटेंशन है इसका उल्टा होता है, जिसमें क्लिनिक में बीपी सामान्य आता है लेकिन घर के तनाव या काम के माहौल में बढ़ जाता है, इसलिए 24 घंटे की जो बीपी मॉनिटरिंग है उसको ज़्यादा सटीक माना जाता है। और बीपी के है वो कई हमारे स्वास्थ्य के जो कह सकते हैं कि असर में शरीर के कुछ अंगों पर ये जल्दी है वो डैमेज करता है, जैसे किडनी है,
आंखें

है, हमारी याददाश्त है, तो किडनी में उक्त जो उच्च रक्तचाप होता है वो किडनी की महीन जो रक्त वाहिकाएं हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, जिससे किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। और आंखों की पर्दे की जो नसें है वो फट सकती है, जिससे धुंधला दिखने लगता है या रोशनी भी जा सकती है। और दिमाग में खून का दौरा कम होने से समय के साथ साथ भूलने की बीमारी है वो भी हो सकती है। और स्लीप एपनिया और बीपी, तो जो लोग सोते समय बहुत तेज खर्राटे लेते हैं या जिनकी सांस सोते समय कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, उनका बीपी रात में ही बढ़ा रहता है। और रात को बीपी का कम ना होना दिल के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो दवाओं के साथ ये ना करें, यानी कि अचानक दवा बंद करना ये कभी भी ना करें। बीपी नॉर्मल होते ही लोग दवा छोड़ देते हैं, इससे बीपी अचानक बहुत तेजी से बढ़ सकता है, जो कि शरीर के लिए खतरनाक है। सप्लीमेंट से भी हमें दूर रहना चाहिए, यानी कि बिना डॉक्टर से पूछे बीपी की दवा के साथ कोई भी आयुर्वेदिक या कड़क जड़ी बूटी वाले सप्लीमेंट ना ले। यानी कि आप कोई भी बदलाव करते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। तो श्रोताओं, ये जो कुछ हमने जानकारी आपके साथ शेयर की है बीपी से या वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर विशेष जो हमने बातचीत की है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे है वो बातें हैं जिनको अपनाकर हम अपनी या अपने परिवार में या अपने आसपास जिनको भी हाइपरटेंशन की है वो शिकायत है तो उसको हम कम कर सकते हैं या हम उसको ना के बराबर भी ला सकते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Bubbly.
1: Hoi.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बंटी और बबली से महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करेंगे छुट्टियों का करें सदुपयोग। जी हाँ दोस्तों, अभी समय चल रहा है छुट्टियों का, हर जो बच्चा है वो छुट्टियों को एंजॉय कर रहा है और

खुलकर कह सकते हैं कि वो शांति से है, वो अपना समय बिता रहा है। लेकिन श्रोताओं, जो ये छुट्टियां हुई है, इन छुट्टियों का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ सोकर खाकर ही हम छुट्टियों को ना बिताएं, इसका अगर हम सदुपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ स्किल्स है वो सीख सकते हैं। तो अपनी दिनचर्या में कुछ नया शामिल करें, जैसे कोई नया कौशल सीखें, अपनी सेहत या हॉबी को समय दें, या किसी यात्रा पर भी आप निकल सकते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आजकल ऐसे हैं जो आपको कई ऐसे जो कोर्स है वो ऑफर करते हैं। आप अपनी पसंद का कोई नया कोर्स कर सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, नई भाषा है वो सीख सकते हैं, या कोई आप क्लास, जैसे आप अपनी हॉबी की क्लास है, चाहे किसी को डांस का शौक है तो वो डांस क्लास ज्वाइन कर सकता है। पेंटिंग के लिए अगर किसी को पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग ड्राइंग कर सकता है। और भी कई ऐसे जो क्लासेस है जिसको अपनाकर आप अपने जो छुट्टियों के समय को है, क्वालिटी टाइम है, वो बना सकते हैं। तो पेंटिंग, फोटोग्राफी, बागवानी यानी कि गार्डनिंग भी कर सकते हैं, या म्यूजिक क्लासेस है। तो ऐसी जो कलाएं हैं इसको अगर आप समय देते हैं तो आपके जीवन में है या आपके खुद के है वो पर्सनल जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। और इसके साथ साथ आप यदि है वो आप स्थानीय किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे आप बात करते हैं हम अपनी जैसलमेर की, तो हम यहाँ रह रहे हैं तो हम छुट्टियों का आनंद लेने के लिए यहाँ के ऐतिहासिक जो स्थल है, जैसे जैसलमेर का किला है, या हमारे आसपास कई ऐसे टूरिज्म पॉइंट है, या ऐसे पटवों की हवेली है, तो हम वहाँ जाकर है वो कुछ समय देकर हम उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं, इनकी किसने बनाया है, कब बनाया है, और उस पर डिटेल में जा सकते हैं। तो इससे हमारा जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा और हम अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, कई बार हम अपने जो जीवन में है हमने अपने आसपास की चीज़ों पर कहीं ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम अगर कई लोग ऐसे हैं जो जो पूरा फोर्ट है वो भी अच्छे से नहीं देखा है, उसमें क्या क्या विशेष है वो बातें वो हमें पता नहीं है, या पटवों की हवेली, या हमारे आसपास भी ऐसे कई गांव हैं जहां लोग है वो देखने को आते हैं, तो हम उनको वहां पर देखकर हम जानकारी पूरी ले सकते हैं, तो हम अपनी जो नॉलेज है उसको भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो रोजाना हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि छुट्टियां हो गई है तो हम 10 बजे या 12 बजे उठ रहे हैं, कई बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेट उठ रहे हैं, तो ऐसे में उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। यानी कि सोने से अगर सब कुछ मिल जाता तो हर व्यक्ति सोकर पा लेता, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जल्दी उठना पड़ेगा, और जल्दी उठकर हमें योग है या व्यायाम है वो अपनाना होगा, अपनी डाइट में सुधार करना पड़ेगा, जिससे कि हम दिन भर है वो ऊर्जावान महसूस करें। और हम अपने घर में है वो घर की सफाई व्यवस्था को भी देख सकते हैं, यानी कि हम अपनी मम्मी है यानी कि माएँ हैं उनकी मदद कर सकते हैं, जैसे हम अपने कमरे है, वार्डरोब है, कंप्यूटर है, कॉरिडोर है व्यवस्थित कर सकते हैं, साफ सफाई में उनकी हेल्प कर सकते हैं, जिससे हमारा घर है वो ही चमकेगा और स्वस्थ एक वातावरण हमें प्रदान होगा। इसके साथ हम अपने खाली समय में हम ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक या उपन्यास जैसी कई ऐसी किताबें हैं वो भी पढ़ने की आदत डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐसी आदतें अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये आदतें लंबी चलती हैं, और जब ये लंबी चलती है तो हमारा जो जीवन है वो इनसे जरूर सकारात्मक रूप से है वो प्रभावित होता है। और सबसे विशेषकर बात करते हैं आज की, तो खुद को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम समय के साथ खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम एक समय ऐसा आएगा कि हम बहुत खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे। विशेषकर बात करते हैं तो आजकल कई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसका है वो हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो जब हम ऐसे धीरे धीरे नॉलेज नहीं रखना सीखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें कुछ पता ही नहीं होगा कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है। तो जो अपनी जो कह सकते हैं कि काम का पोर्टफोलियो तैयार करें, यानी कि अगर आपके अंदर कहीं स्किल है, ऐसी हॉबीज है, तो आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, और पब्लिक स्पीकिंग है वो भी कर सकते हैं, यानी कि ऐसी जो कई ऑनलाइन कम्युनिटी होती है जिसे आप ज्वाइन करके पब्लिक स्पीकिंग है वो अपने अंदर ला सकते हैं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस की बुनियादी जो नियम है वो भी सीख सकते हैं, टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन टूल की मदद से आप अपने कीबोर्ड टाइपिंग स्पीड है, सटीकता है, उसको छुट्टियों में बढ़ा सकते हैं, और कई ऐसे व्यवहारिक तकनीकी काम हैं जिसको आप कर सकते हैं, यानी कि घर के पुराने सामान को रिसाइकल

करना, कुछ नया सजावटी बनाना, बेसिक रिपेयरिंग जैसे घर के छोटे मोटे काम जैसे प्लम्बिंग है, बिजली का बोर्ड ठीक करना, गाड़ी साफ करना, ये भी कुछ ऐसे स्किल्स है वो भी आप सीख सकते हैं। और अपना खुद का ब्लॉग बनाए, यूट्यूब चैनल है वो बना सकते हैं, पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं और अपने विचार है वो दुनिया के सामने साझा कर सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन है ये भी बहुत बड़ा ऑप्शन आपके सामने है। और आजकल जो AI टूल्स है, उस AI टूल्स का उपयोग करना और उससे हम अपने जीवन में क्या-क्या बदलाव ला सकते हैं, ये आप है वो छुट्टियों में सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, रिश्ते और नेटवर्किंग, इसको बढ़ाना और इसको मैनेज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने समय निकाल कर पुराने दोस्तों से मिले और रिश्तेदार हैं उनको 5 मिनट कॉल करें, उनसे बात करें। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपने लंबे समय से बात नहीं की है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और माता पिता है, दादा दादी है, इनके साथ भी आप बैठकर है वो समय बिता सकते हैं, जिससे कि एक क्वालिटी टाइम, एक आपकी जो छुट्टियां हैं वो क्वालिटी टाइम में है वो बदल सकती है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी छुट्टियों को कैसे बिताते हैं, चाहे आप घर पर रहकर कुछ करना चाहते हैं या बाहर निकलकर कुछ करना चाहते हैं, या आपका पसंद का कोई ऐसा क्षेत्र हो, फील्ड हो जिस पर आप काम करना चाहते हैं। तो मैंने आपके साथ है वो कई ऐसी जो बातें या ऐसे फील्ड है वो शेयर किए हैं जिस पर आप काम करके है वो अपनी छुट्टियों को एक आनंदमय है वो समय बना सकते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल है तुम्हारा से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में ये प्यारा सके। अब हम चर्चा करेंगे स्वाध्याय के महत्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्वाध्याय यानी कि स्वयं का अध्ययन, जो कि अच्छे विचारों शास्त्रों का पठन पाठन करना तथा आत्मचिंतन करना इसमें शामिल है। वह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, आत्मसज्ञान, मानसिक शांति और जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है स्वाध्याय। तो श्रोताओं, स्वाध्याय के बहुत से लाभ है, लेकिन हम बात करते हैं मुख्य लाभों की। तो इसमें आत्मज्ञान और सुधार शामिल है, यानी कि स्वाध्याय से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और स्वयं का विश्लेषण करके व्यक्तित्व में सुधार करने का भी अवसर मिलता है। ज्ञान में वृद्धि होती है, यानी कि अच्छे साहित्य और पुस्तकों को पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है, अज्ञानता दूर होती है और यह मन को विकारों से मुक्त करके एकाग्रता को बढ़ाता है, जिससे कि तनाव भी कम होता है। और नियमित स्वाध्याय करने से विचारों में सकारात्मकता आती है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण है वो भी परिपक्व होता है। और स्वाध्याय के कई तरीके हैं, जैसे आप सत्संगति से भी स्वाध्याय कर सकते हैं, यानी कि महापुरुषों, संतों, विद्वानों के विचारों को सुनना, उनसे मिलना, यानी कि आपकी जो संगति है उससे भी आप स्वाध्याय कर सकते हैं। और ग्रंथों का अध्ययन करके, यानी कि धार्मिक, आध्यात्मिक, प्रेरक पुस्तकों का नित्य अगर आप पठन करते हैं तो भी आप स्वाध्याय है वो कर सकते हैं। दिन भर के कार्यों का विश्लेषण करना, अपनी गलतियों से सीखना, यानी कि आत्मचिंतन के द्वारा भी आप स्वाध्याय है वो कर सकते हैं। और आप कई ऐसे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके साथ बैठकर चर्चा करके अपनी समस्याओं का समाधान है वो कर सकते हैं, उनसे प्रश्न कर सकते हैं। आपकी कई ऐसी समस्या है जिसकी है वो उत्तर उनके पास होते हैं तो भी आप है वो स्वाध्याय कर सकते हैं। तो स्वाध्याय हमें एक बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाता है, जो सही और गलत में फर्क समझने में भी मदद करता है। यह कोई बाहरी ज्ञान नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानना और उसको है वो एक निरंतर प्रक्रिया के तौर पर देखना इसमें शामिल है। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे जल स्रोतों के संरक्षण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जल स्रोतों का संरक्षण क्यों आवश्यक है इसके बारे में हम बात करेंगे। जल स्रोत जैसे नदी, तालाब, कुएं, झील, इन सबका संरक्षण पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। धरती पर सीमित मात्रा में मौजूद मीठे पानी को प्रदूषित होने और सूखने से बचाना हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे पास जो पीने योग्य जो पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, तो उस कम मात्रा में उपलब्ध पानी की, उस पानी का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो जीवन का आधार ही पानी है, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, वनस्पति हो, इन सबका अस्तित्व है वो पूरी तरह पानी पर निर्भर करता है। लगातार घटता भूजल स्तर भविष्य में भीषण जल संकट का संकेत दे रहा है। तो हम सब जानते हैं कि जो पानी का स्तर, जिस तरीके से भूजल स्तर घट रहा है, अगर हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास पानी ही नहीं बचेगा। और पानी हमारे जीवन का, हम सबके जीवन का आधार है। और जल स्रोतों के सूखने से खेती है वो नष्ट हो रही है, खाद्य सुरक्षा है उसको भी खतरा पैदा हो सकता है, और साथ ही साथ कचरा और रसायनों से मिलने से जो पानी है वो जहरीला हो रहा है, जिससे भी

बीमारियां फैलती जा रही है। तो प्रदूषण है, उस पर भी रोक लगाना बहुत जरूरी है। और जलीय जीव जंतु और प्रकृति के चक्र को बनाए रखने के लिए भी पानी पानी है वो जरूरी है। तो श्रोताओं, पानी हमारे लिए कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है, इसका जो उत्तर हम सबके पास है, और पानी का सदुपयोग कैसे करना है, उसका संरक्षण कैसे करना है, ये भी हम सबको जानकारी है। लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर या व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे हम कुछ उपाय हैं जिनको अपना सकते हैं, जैसे वर्षा का जल है उसका संचयन हम कर सकते हैं, तो बारिश के पानी को सहेजने के लिए रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग प्रणाली है उसको हम अपना सकते हैं, कचरा प्रबंधन करके यानी कि प्लास्टिक, औद्योगिक कचरा, पूजा सामग्री, इनको जल स्रोतों में बहाने से रोकना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो पानी है वो भी प्रदूषित होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म धड़कन से। अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाज में प्यारा सा गीत। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अपने दोस्त अर्चना को दीजिए इजाजत।

आकाशवाणी जैसलमेर से प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों में शाम 6:05 पर सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा। कार्यक्रम का संयोजन करेंगे श्री रामजी लाल मीणा। वाचन स्वर होंगे शरद शर्मा और श्यामवीर सिंह के।

8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। श्रोताओं, यदि हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा, ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। लीजिए, आप सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

अग जग मय सब रहित बिरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमिया मोर बचन।

ప్రియ కంత జయ తనత పాల భగవంత పాలన సుర ధరణి అద్భుత క

भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा।

0: नाथ पद कंजा
1: जय प्रणत पाल भगवंता जय जय सुर नायक जन सुख जायक प्रणत पाल।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम श्री रामचरित मानस कान। ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। लीजिए आप सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से थोड़ी ही देर में सुनिए आकाशवाणी जयपुर से प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में और उसके पश्चात राजस्थानी में।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी
0: हाँ
2: आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
2: क्या
3: आरबीआई कहता है।
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
5: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
4: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से

0: पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार और रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोगों से ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। और विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जाँच शिविरों का आयोजन किया गया। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर अब से कुछ ही देर पहले गोथेनबर्ग पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवानी की। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ व्यापार, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप यात्रा का तीसरा चरण है। वहीं कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने अपने संबंधों को सामरिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
5: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
4: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर पहुंचे। श्री बिरला ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कोटा में भीम राजपूत हॉस्टल में राजमाता शिव कुमारी बालिका छात्रावास की आधारशिला रखी। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि शिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया।
6: आज समाज के अंदर शिक्षा की आवश्यकता, में कलम की आवश्यकता, ये हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने, इसके लिए समाज ने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर काम किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, छात्रावास बनाए, लेकिन प्रधान की आवश्यकता ये भारत की महिलाएं समाज जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने कीर्ति मान हासिल करें और इस समय आवश्यकता यही है कि समाज ने इतने बड़े संस्कार दिए हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां
4: समाज। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रशासनिक पदों पर चयनित अधिकारियों से पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं के समाधान का विशेष ध्यान रखने की बात कही है। उन्होंने गांव और गरीब लोगों के लिए काम करना नए भारत के निर्माण की प्राथमिकता बताया। राज्यपाल श्री बागड़े आज जयपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 नव चयनित अधिकारियों और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के 59 नव चयनितों का सम्मान किया गया। राज्यपाल ने अंतिम छोर के व्यक्ति की आवाज सुनने और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आह्वान किया। देश के भारतीय

0: औद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा 2026 का आज आयोजन किया गया। इसमें जेईई मेंस में क्वालिफाई करने वाले 2.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। आईआईटी रुड़की की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया गया। कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा 2 पारियों में हुई। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर रोक लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार चांदी की कई श्रेणियों से फ्री सूची से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। इन पाबंदियों के कारण अब बिना सरकारी मंजूरी के कोई भी आयातक या जेवरात कारोबारी विदेश से चांदी का आयात नहीं कर सकेगा। गैर जरूरी आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा के खर्च पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ईंधन बचाने की मुहिम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर से अजमेर का सफर रेलगाड़ी से तय किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से संवाद कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की।
1: सबको मिलकर अगर हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, कार पूलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं अगर हम लोग लेंगे, ये चेंजेस अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत फर्क।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी बीकानेर रेलवे स्टेशन से अपने आवास तक का सफर ई रिक्शा से तय कर ईंधन बचत का संदेश दिया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी आज जोधपुर में लोगों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किफायत से करने का आह्वान किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज आमेर महल का भ्रमण किया। उन्होंने महल परिसर में चल रहे विकास और संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। पर्यटकों की बढ़ती आवक को देखते हुए मुख्य सचिव ने आमेर तक पहुंचने वाले रास्तों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल संग्रहालय और गाइड प्रशिक्षण को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
2: जो जयपुर का इतिहास है, आमेर किले में रहता है। आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काफी रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है शासकीय में, और हाल ही में 2 दिन पहले मैंने रिव्यू किया था तो उस समय मैंने देखा काफी कल्चरल कंजर्वेशन का वर्क आईजीएनसी के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। 500 साल पुराना इतिहास को कंजर्व करना बड़ा स्पेशलाइज्ड आर्ट है, तो आज मैंने देखा था और मैं संतुष्ट।
0: इस दौरान पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज और आमेर महल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश भी मौजूद रहे। हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संग्रहालयों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। इस मौके पर राज्य के सभी संग्रहालयों तथा स्मारकों में सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश मुक्त रखा गया है। वहीं इससे एक दिन पहले आज जयपुर में हेरिटेज टेम्पल वॉक रखी गई है। इसके जरिए शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण का संदेश दिया गया। कोटा में प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल होने के मामले में कल दिल्ली एम्स की टीम ने कोटा का दौरा किया। इसकी जांच रिपोर्ट अब पेश की जाएगी। इस बीच अब तक 16 से अधिक महिलाओं की किडनी खराब होने के मामले सामने आ चुके हैं। आज न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक और प्रसूता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस प्रकार रहस्यमय संक्रमण से अब तक 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। आज विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर रखे गए। इनमें विशेषज्ञों ने लोगों के ब्लड प्रेशर की जांच की और इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। इसी कड़ी में झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में भी शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर PMO डॉक्टर जितेंद्र भामू ने लोगों को उच्च रक्तचाप से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समय पर इलाज नहीं करवाने पर इससे कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
3: रक्तचाप एक गंभीर बीमारी के रूप में आम जन के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसमें डायस्टोलिक बीपी है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आम जन को की सलाह है कि समय समय पर अपनी निःशुल्क जांच पीडी के अस्पताल में अवश्य कराएं।

0: यहाँ पे दवा जांच एवं उपचार की विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा सेवाएं होती है।
1: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने उदयपुर के प्रतापनगर थाने के एएसआई सुनील विश्नोई को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी के अतिरिक्त एसपी अनंत कुमार ने बताया कि आरोपी ने ये राशि दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में मांगी थी। राज्य में बीते सप्ताह से मौसम में जारी उतार चढ़ाव और बदलावों के बीच गर्मी का असर फिर से तेज होने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी तथा हीट वेव का प्रकोप रहने के आसार जताए हैं। विभाग ने आज भी 8 जिलों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया है। दिन और रात दोनों के तापमान में उछाल आने की संभावना है। पश्चिम और उत्तरी पश्चिम जिलों में लू का सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। इस बीच बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और जैसलमेर में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है और रातें भी काफी गर्म दर्ज की जा रही हैं। वहीं करौली में आज दिन का तापमान 45 डिग्री के पार मापा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार और रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोगों से ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया और विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जाँच शिविरों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफल आयोजन के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न क्रियान्वयन समितियों के गठन के आदेश जारी किए गए हैं। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर पवन कुमार पारीक ने बताया कि जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर निशांत जैन करेंगे और जिला स्तर पर विभिन्न विभागों, स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी समितियों का गठन कर कार्यक्रम के सफल संचालन, योग प्रशिक्षकों की व्यवस्था, प्रचार प्रसार गतिविधियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं तथा योग प्रदर्शनी के आयोजन की जिम्मेदारी तय की गई है। डॉक्टर पारीक ने बताया कि जनमानस में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में 2 मई से 20 जून तक 50 दिवसीय योग दिवस काउंटडाउन अभियान के तहत विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 21 जून को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक प्रमुख कार्यक्रम रखा जाएगा। इस मौके पर योग विषयक व्याख्यान, कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। बीकानेर के पीबीएम ट्रोमा सेंटर में ओबीआरसी ऑर्थोबायोलॉजिकल रिसर्च क्लिनिक के विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने विधायक कोटे से ये राशि मंजूर करते हुए कहा कि चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक संसाधनों के विस्तार के लिए ये कार्य महत्वपूर्ण होगा। इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं और शोध तथा उपचार कार्यों को मजबूती मिलेगी। जिले में स्कूली विद्यार्थियों को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और राजस्थानी पुस्तकों की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी पुस्तकालय में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को दर्शाते हुए फ्लैग्स तथा प्रदर्शनी लगाई गई है। अकादमी के सचिव शरद केवलिया ने बताया कि पुस्तकालय में उपलब्ध लगभग 14,000 पुस्तकों के संबंध में विद्यार्थियों को बताते हुए राजस्थानी में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बीकानेर में बीते दिनों ग्राम रथ अभियान के जरिए आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। ये विकास रथ जिले के गांवों और ढाणियों तक पहुंचे, जहां पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं से लाभान्वित किया गया। ये अभियान कल संपन्न हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से राज्य सरकार आम जन के द्वार तक पहुंचकर किसानों

0: कलेक्ट्रेट सभागार में पंच गौरव अभियान की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर को योजना के जिला नोडल अधिकारी और आयोजना विभाग के संयुक्त निदेशक धर्मपाल कीचड़ ने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2026-2027 के लिए जिले से 10,55,45,000 रुपए के विभिन्न प्रस्ताव भेजे गए हैं। जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रस्तावों पर जल्दी ही अग्रिम कार्रवाई करने और व्यक्तिगत रूप से समन्वय करने के निर्देश दिए। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। इस अवसर पर जूनागढ़ के सामने स्थित शिखरबंद महादेव मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। शिवालय में रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा गया। इसी कड़ी में प्रसाद वितरण, फूलों की रंगोली और सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन रा प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन रे साथे कारोबार एर रक्षा समेत दूजा हलका माय आपसी सहयोग माथे बतल करेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ने भविष्य री माली बंदोबस्त रो खास आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लोगों ईंधन बचत मुहिम माय भागीदारी तय करन री अर्ज करी और विश्व रक्तचाप दिवस रे मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई जा। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन री दो दिन री यात्रा माथे कुछ देर पहला गोथेनबर्ग पुग्या। हवाई अड्डा माते स्वीडन रा प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रिस्टर्सन प्रधानमंत्री श्री मोदी री अगुवाई करी। प्रधानमंत्री श्री मोदी स्वीडन रा प्रधानमंत्री रे साथ है कारोबार तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रौद्योगिकी स्टार्टअप सप्लाई कड़ी रक्षा अंतरिक्ष जलवायु परिवर्तन नियंत्रण माथे बतल करेला। दोनों नेता यूरोपीय आयोग री अध्यक्ष सुश्री उर्सुला फॉन डेर लॉयन रे साथे यूरोपियन उद्योग गोलमेज सम्मेलन माए बोलेला। आ प्रधानमंत्री श्री मोदी री संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप यात्रा रो तीजो चरण है। वठे काले आपरी यात्रा रा दूजा चरण माए भारत और नीदरलैंड्स आपरा हिता ने सामरिक फर माथे ले जार 17 करार करिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और डीप टेक्नोलॉजी भविष्य री माली बंदोबस्त रो खास आधार वेला। आज अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क का पहला चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस रो उद्घाटन करता वणा कहो कि भारत दुनिया रा हर उभरता हलका में अगवा बन गयो है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज आपरा संसदीय हलका कोटा बूंदी रादो रामाथे पुग्या। वणा कोटा में भीम राजपूत हॉस्टल में राजमाता शिव कुमारी बालिका हॉस्टल री नींव धरी। ई मौके श्री बिरला कहो कि शिक्षाओं ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जा सके है वरना बालिका शिक्षा रा प्रसार सारू खास कोशिश करण माथे जोरी दियो।
3: आज समाज के अंदर शिक्षा की आवश्यकता में कलम की आवश्यकता हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने के लिए समाज ने समय समय में अलग अलग काल खंड के अंदर काम किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, छात्रावास बनाए, लेकिन प्रधान की आवश्यकता ये भारत की महिलाएं समाज जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने कीर्ति मान हासिल और इस समय आवश्यकता यही है कि समाज ने इतने बड़े संस्कार दिए हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियां इस देश और समाज के लिए समर्पण के साथ काम करें।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े प्रशासनिक ओहदा माथे चुनिजा एहलकारा मु पिछड़ा और कमजोर तबका लोगों की समस्याओं ने

0: ਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰੋਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਵਣਾ ਗਾਂਵ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੂ ਕਾਮ ਕਰਨੋ ਨੂਆ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਤਾਇਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਾਗੜੇ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਨਮਾਨ ਜਲਸਾ ਮਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾ। ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਰਾਤੀ ਨੂਆ ਚੁਣੀ ਜਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਰਾ 59 ਨੂਆ ਨਿਯੁਕਤ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਰੋ ਸਨਮਾਨੀ ਕਰੀ ਜੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਖਰੀ ਛੇੜਾ ਰਾ ਮਿਨਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਔਰ ਚੁਣੀ ਜਾ ਜਨ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰੇ ਸਾਥ ਚੋਖਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਰੀ ਅਰਜ ਕਰੀ। ਦੇਸਰਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਮਾਏ ਭਰਤੀ ਸਾਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੇਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2026 ਰੋ ਅੱਜ ਆਯੋਜਨ ਕਰੀ ਜੋ। ਇਣ ਮਾਂ ਜੇਈ ਮੈਨਸ ਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 2.5 ਲੱਖ ਪਟੇਸਰ ਭੇੜਾ ਵੀ ਆ। IIT ਰੁੜਕੀ ਕਾਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਈ ਜਿਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਮਾਰਫਤ ਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਮਾਂ ਵੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਂਦੀ ਰਾ ਆਯਾਤ ਮਾਥੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਾਰ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ ਕਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮੁਜਬ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੂਚੀ ਮਾਂ ਹਟਾਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਮਾਂ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਭੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਜੇਵਰਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਚਾਂਦੀ ਰੋ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਲਾ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਖਰਚ ਮਾਥੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਸਾਰੂ ਉਹ ਕਦਮ ਉਠਾਈ ਜੋ ਹੈ। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक माते AIR News राजस्थान माते सुन सको हो। इनके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माते ही समाचार सुन सको हो और वहाँ जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा री ईंधन बचाने री मुहिम में जन नुमाइंदा अहलकार और लोग ही आपरी भागीदारी तय कर रिया है। ई कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर अजमेर सफर रेलगाड़ियों पूरा करियो। ई दौरान वना यात्रुओं रे साथ बतल करने सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट अपनाउन री अर्जी करी।
1: सबको मिलकर अगर हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, कार पूलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं अगर हम लोग लेंगे, ये चेंजेस अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत फर्क।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाली बीकानेर रेलवे स्टेशन आपरा रहवास तीन सफर ई रिक्शा तय करने ईंधन बचाने रो संदेश दियो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेली आज जोधपुर में लोगों पेट्रोल डीजल ने किफायती काम में लेने की अर्ज करी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन आज आमेर महल ने देखा। वना महल परिसर में चल रहा विकास और संरक्षण रा कामा रो जायजो लियो। सैलानिया री बदती आवत ने देखना मुख्य सचिव आमेर ताई पुगन वाला मार्ग ने और बेहतर बनाने रा निर्देश दिया। वना डिजिटल संग्रहालय और गाइड सिखावन ने लेर अहलकार ने जरूरी निर्देश दिया। ई दौरान पुरातत्व महकमा रा निदेशक डॉक्टर पंकज और आमेर महल अधीक्षक डॉक्टर राकेशी मौजूद रिया।
2: जो जयपुर का इतिहास है आमेर किले में रहता है। आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काफी रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है सासकी में, और हाल ही में 2 दिन पहले मैंने रिव्यू किया था तो उस समय मैंने देखा काफी कल्चरल कंजर्वेशन का वर्क IGNCA के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। 500 साल पुराना इतिहास को कंजर्व करना बड़ा स्पेशलाइज्ड आर्ट है, तो आज मैंने देखा था और मैं संतुष्ट।
0: हर साल 18 महीने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जावे है। इन रो मकसद संग्रहालय री मार्फत सांस्कृतिक लेन देन और आपसी समझ ने बढ़ावा देवनो है। ई मौके राज्य रा सगला संग्रहालय और स्मारक में आवन वाला सगला सारू प्रवेश मुक्त राखी जो है। वठे इनू एक दिन पहला आज जयपुर में हेरिटेज टेम्पल वॉक राखी जी। इनरी मार्फत शहर री धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर रे प्रति जाग जगावन और उनरा संरक्षण रो संदेश दी जो। कोटा में प्रसूता मारी मौत और किडनी फेल होने रा मामला में काले दिल्ली MCA टीम कोटा रो दौरो करियो। इनरी जांच रिपोर्ट अबे पेश करी जायला। ई बीच अजे ताई 16-32 महिलाओं री किडनी खराब होने रा मामला सामी आ चुका है। आज न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक और प्रसूता इलाज रे दौरान दम तोड़ दियो। ई रहस्य वाली संक्रमण अजे ताई 5 प्रस्तावारी मौत वह चुकी।

0: है। आज विश्व रक्तचाप दिवस रे मौके प्रदेश माय न्यारा न्यारे ठोडा जागरूकता कार्यक्रम स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई जा। आम आय विशेषज्ञ लोगों रा ब्लड प्रेशर की जांच करी और इनु होन वाला नुकसान रा बारा माय जानकारी दी। ई कड़ी माय झुंझुनू रा BDK अस्पताल माय शिविर लगाई जो। ई मौके PMO डॉक्टर जितेंद्र भामू लोगों ने BPU होन वाला बुरा नतीजा की जानकारी दी। वना कहो के भगत माथे इलाज नहीं करावन माथे इनु कई चिंताजोग स्वास्थ्य समस्याओं रो सामनो करनो पड़ सके है।
1: रक्तचाप एक गंभीर बीमारी के रूप में आम जन के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसमें डायस्टोलिक BP है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आम जन को इच्छा है कि समय समय पर अपनी निःशुल्क जांच पीढ़ी के अस्पताल में अवश्य कराएं। यहाँ पे दवा, जांच एवं उपचार की विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा सेवाएं होती।
0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB उदयपुरा प्रतापनगर थाना रा ASI सुनील बिश्नोई ने 1 लाख रुपया की घूस लेवता गिरफ्तार किया है। ACB रा अतिरिक्त SP अनंत कुमार बतायो के आरोपी आ रकम दुष्कर्म की कोशिश और छेड़छाड़ रा मामला में मुकदमो दर्ज नहीं करने की एवज में मांगी है। बालोतरा कने आज एक सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत हुएगी। दुर्घटना भारत माला एक्सप्रेस वे माते हुई। जिला पुलिस अधीक्षक रमेश बतायो के एक तेज रफ्तार कार रे बेकाबू वेर पलट जावन उन माय सवार 3 लोगा मौका माथे दम तोड़ दियो वठे 3 दूजा गहरा घायल वे गया। ए लोग गुजरात रा बनासकांठा जिला रा धानेरा गांव रा रहवासी बताया जावे। उठी ने अजमेर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 माथे नागौर जिला रा चकढाणी गांव में एक कार और रोडवेज बस री टक्कर वेगी जिन में 4 लोगों री मौत वेगी और 4 गहरा घायल वे गया। उठी ने पाली जिला रा देसूरी हल्का में घाणेराव गांव में दूषित भोजन कामाय लेवणु 11 लोगों की तबियत बिगड़ गई। वहां रो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करायो जावे। नाबे मौसम राज्य में लारला हफ्ताओं मौसम में चाल रो उतार चढ़ाव और बदलाव रे बीच गर्मी रो असर फिर तेज होने लग्यो है। मौसम महकमो आवता 2-3 दिन में तापमान में और बढ़वार और हीट वेव रो असर रेवण रा आसार जताया है। महकमो आज ही 8 जिला में लू रो येलो अलर्ट काढ़ियो है। दिन और रात रा तापमान में उछाल आवण री आस है। आथुणी और आथुणी अगुणी जिला में लू रो सबू बत्ती असर देखियो जावे। ये बीच बीकानेर चूरू बाड़मेर और जैसलमेर में करड़ी गर्मी रो दौर चाल रियो है और रात में घनी गर्मी दर्ज करी जावे। वठे करौली में आज दिन रो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से पार ना पीजियो। डीग जिला में खेती महकमा कानू सघन गुण नियंत्रण अभियान चलायो जावे। 15 जुलाई तक चलने वाला ये अभियान के तहत खेती महकमा की टीम दुकाना और खाद बीज और कीटनाशक का नमूना भेड़ा करेला इन्हें प्रयोगशाला में भेजने वाली गुणवत्ता जांची जाएला। मैं अब आखिर में खास समाचार आप एक और फिर सुन दे रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन रा प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन रे साथे कारोबार और रक्षा समेत दूजा हल्का में आपसी सहयोग माथे बातल करेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ने भविष्य री माली बंदोबस्त रो खास आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लोगों ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी तय करने री अर्ज करी और विश्व रक्तचाप दिवस मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाया। नरेंद्र साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो मारो अगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जैसलमेर के हम गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे है। लीजिए अब सुनिए ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

ಗ್ರಾಮದಾಗ ಸುಣ ಹಗ್ಲವ ಏನೋ ವಿಶುಭೈದ ಗಡಂಗಣ ಆರಾಮ ಬ್ರೋ ಪಹಲೆ ಗೊತ್ತಡ್ಕೋ ಹಗಡುವೆ ಬಾರ ಗರ್ಮಿ ಜೋರ್ದಾರೆ ಗರ್ಮಿ ತೊ ಪಹಲೆ ಹಿ ಪಡ್ತಿ ಸಮಯ ಸಾಥ್ ಕಿ ಯಪ್ಪ ಥೋಡಾ ಸೇ ಕಿ ಈಗ ಆಜಕಲ್ ಪಂಖಾ ಹವಾ ಕೂಲರ್ ಆದಿ ಹೋಗಿ ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ ಭಿ ಅಪನ ಕಿ ಜಾಪ್ತ ರಾಖಣ ಹೈ ಕೇಳು ಮತಲಬ ಹೈ ಕಿ ಭೀ ತೊನಕು ಕಾಮ ಹೈ ತೊ ಥೇ 12 ಬಜೆ ಪಹಲೆ ನಿಪಟಾ ದೋ ಯಾ ಬಸ ಶಾಮ 6 ಬಜೆ ಬಾದ ಜಾಓ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಕೋ ಬಹುತ ಜರೂರಿ ಕಾಮ ಹೈ ನೀ ತೊ ಸರ್ ಮಾತೇ ತೊ ಗಮಛೋ ಹುವೆ ಟೋಪಿ ಹುವೆ ಚಶ್ಮೋ ಹುವೆ और एक पानी की बोतल को रखो हीट स्ट्रोक आएगी नहीं पर वो की नुकसान करेगी और विशेष रूप से अपना बाल बच्चों और ध्यान रखना है हो सके जो तुम चप्पल पहन के बाहर निकालो पाठा गर्म हुए गर्मी नहीं छिड़ता हुए और साथ साथ अपना देखो पशु धन नहीं अब बोलो है ओकी कह कौन तो ऊर बराबर भी ध्यान रखना क्यों मतलब है कि बाड़े की व्यवस्था हुए और वो बाड़े व्यवस्था में की छाया हवा भी आवे पानी की बराबर व्यवस्था हुए और पशुओं में किसी को अपने कई प्रकार की एक जो रोग हुए नहीं तो पूरा समय समय पर अपन टीकाकरण भी है घनी बात अधिक से अपने गाय एक मतलब जो घूमे नहीं तो बीठो चाटनी के भीतो चाटनी तो उनमें की कैल्शियम की कमी हुई तो वो वास्ते की बराबर टीकाकरण कराउन सो की अपना पशु वास पुष्ट हुई तो क्यों मतलब है कि अपन की खुद जाप्त रखना है अपना पशुधन जाप्त रखना है हमें बात करो पौ देखो आज युग की प्रतिस्पर्धा युग है हर आदमी चाहे कि छोटे से समय में बढ़िया पैसा कमाओ और तो युवा से किए क्या देखो खेती बाड़ी तो है ही है पोकर रहे हैं खेती बाड़ी साथ में अगर जब पोको दूसरो अगर जो छोटो मोटो को उद्योग लगाए काम करा तो उनका भी अपन का ही फायदा है डेयरी फार्म भी है हस्तकला है जो महिला है नहीं अगर जो काच और धागे रो काम करके बढ़िया जेड़ा चादरा बनावे तो उठा उन्होंने जी वो पहले कितना राली कौम में लेता था जो कहना की गुदड़ी की भी आजकल पाछी पूरी फैशन आ गई है जो अपना पुराना राली वाला टुकड़ा उन्हें जोड़ के बढ़िया जेड़ो एक पैचो गुदड़ी बनी कपड़ा है जो कोनो भी जोड़ जोड़ के पूरा भी पैचो बने आजकल वो पीतो माथे लगाना टेबल माथे लगाना वो भी फैशन है क्यों मतलब है कि आप किए के अगर पैसों रोकड़ो से नहीं खेती बाड़ी पे पैसों रोकड़ो से तो आदमी ने की जोखन लड़ सकते पड़ता भाई जो खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी में किए जब वो खेती बाड़ी तो कर रहे हो लेकिन साथ में अगर जब पशुधन रखो देखो पशु साथ धन जुड़ो है तो उसको अपने के अतिरिक्त आय प्राप्त होगी कृषि और पशु दो एक दूसरे का पूरक है क्यों मतलब है कि जब अगर पशुधन है तो उसको पशु को दूध दही मक्खन पनीर वो प्राप्त हो से आज के टाइम बाजार में बेचो नहीं तो इनकी खपत भी अपने से ज्यादा है क्योंकि जैसे में अपना पर्यटन है तो दूध दही पनीर खाटो हर एक चीज अपन की खपत है उसकी अपन रोकड़ो पैसा से रोकड़ो पैसा से ना आदमी जोखन शक्ति बढ़ता भी खेती बाड़ी में नए नए उपचार कर सौ ट्रैक्टर लेनो या पचे डिगी बनावनी ट्यूबवेल कराणो फुहारा पद्धति तो ये सब चीजों की पैसे साथ आदमी का आत्मविश्वास बढ़े कार्यक्रम चर्चा आगे जारी रख सौ पहले सुने पहला सीख लोकगीत है।

Oh,

अरे डब डब रे डब डब मा।

let mama know.

ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನಾಟಿ ಅದೇ ನಾಕೋಡಿ ನಾಕೋಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು.

पहला खंड एटा बढ़िया जेडो लोग ही सुनो और आप बात करे था देखो कि भाई अपने आसपास भी की एक जो छोटा मोटा उद्योग है उसे भी पैसा कमा सको जो कि देखो आज अपन देखियो जैसलमेर में कितना परिवर्तन आया। पहले अपन लोग की एक बरसात होती थी तो खड़ी मिजा गेहूँ चना

काली चिबड़ी, यही होता था कदे से बोर होता था। लेकिन समय परिवर्तित हो, नहर आई, नहर के बाद देखो पौधा ज्यादा लगा, अपने से बरसात भी थोड़ी ज्यादा होने लगी। ये वजह से जो अपना चारों आवरण है नहीं पर्यावरण, और काफी फर्क पड़े। ये वजह से किए थोड़ो किए पानी न बचा के चलो, आवर टाइम में पानी बहुत ही कीमत है। तो अपने को पर्यावरण यह किए कि जो पेड़ पौधे ज्यादा लगा उनकी, देखो आजकल अपने बरसातों भी थोड़ी ढंग होने लगी, खेती बाड़ी होने लगी। और बाद देखो फुहारा पद्धति आई, जिके से किए कि फसल में जीरो मतलब रायड़ो बीजो या फसलों लेने चालू की मूंगफली। पच्चे आई बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई में देखो आजकल की करें कि जो पानी की जितनी आवश्यकता होनी उतनी पानी आपने पोतो ना दो, घनी ज्यादा पानी भी नुकसान करी ना पोनो। पानी जो अपन कीमती है आज समय में, वो बराबर अपन ध्यान रखना है। और लाइट भी कम खपत, इस किए कि जो अपने पौधे उन्हें बराबर जो है और सही मात्रा में पानी मिल सकी, वो किए कि जो बढ़ने की क्षमता बढ़ जाए। बीजू बात करो कि देखो खेती बाड़ी साथ मगर जो पौधा लगाओ नहीं तो साल बे साल इंतजार करो, वो आज को पूरा फल मिले वाकई में काबिल तारीफ है। क्यों मतलब है कि वो बीस साल मेहनत की खेती बाड़ी तो कर रहे हो लेकिन साथ में पौधा लगाया तो रोकड़ा पैसा भी, पहले भी थोड़ा बात की रोकड़ा पैसा आदमी रोकी ये जिगर खुल जाया करे। तो थे पौधा लगाओ, फल लो, सब्जियां लगाओ। हमें तो समय साथ अपन पानी है, हर चीज की सुविधा है, सोलर प्लेट लगा दो, लाइट भी की है, अपन किए गए पर्यावरण वास्ते सोलर काफी फायदेमंद है। तो ये छोटी छोटी चीजों जगह इसकी भैलो को की समय साथ धीरे धीरे अपन परिवर्तन जरूरी है। हमें तो अपन ठा पड़ता है मिट्टी जहाँ से ठा पड़ता है अपने जो जमीन है इनमें कई फसल लो जगह अपन हकर पैसा मिले। पहले तो ग्यारह बुरे जीरो घणो अपन जीरो पाऊँ, लेकिन अपन जो जमीन जीरे लायक हो तो जीरो को कर पाऊँ। तो जमीन ही जो मिट्टी जांच कराऊँ उसको ठा पड़ जा सके अपन की बाउन है जिके से कि अपन सकरा पया मिले। तो छोटी जहाँ हो सके तो अपन जैविक खाद रो भी उपयोग करना है, पूरी लागत भी कम, बाजार में बेचने जा सो पैसा भी हकरा, और बाद अपने स्वास्थ्य वास्ते भी फायदेमंद है। रासायनिक खाद जो कि अपनी जमीन भी नुकसान, पैसा भी ज़्यादा और स्वास्थ्य वास्ते हानिकारक है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो करो अपन ध्यान रखना है और चर्चा आपको आगे जारी रखना, लेकिन पहले सुना प्यारे से लोकगीत है।

ਰੋਜ਼ ਤਾਰੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ।

ਅਲੀ ਜੋਤ ਤਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਿਆ

ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಚಿತಾರೆ.

पहले का बात तो घनी करनी, लेकिन घड़ी रिसीव कर रही है एक अपना कार्यक्रम बखत हुए पूर्व आगे दो। राम राम, मस्त रहो, व्यस्त रहो, आप रहो, आप पशुधन धन बराबर ध्यान रखो।

अभी ग्रामीण भाई ग्राम जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। लीजिए आप सुनिए राजस्थानी लोक संगीत।

0: अभी आप राजस्थानी लोक संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए, आप प्रस्तुत है आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा। कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं श्री रामजी लाल मीणा और वाचन स्वर हैं शरद शर्मा के।
1: आजादी का अमृत महोत्सव।

0: आदिम सभ्यता से लेकर आधुनिक युग तक मनुष्य ने बहुत सारी तरक्की की है। एक समय था जब मनुष्य आदिम सभ्यता में रहकर जंगली जीवन बिताया करता था, जब उसके पास न तो पहनने के लिए कपड़े होते थे, न खाने के लिए पर्याप्त ढंग का भोजन, न कुछ खेती बाड़ी, न कुछ आधुनिक संसाधन। लेकिन जैसे जैसे आदिम सभ्यता का विकास होता गया, चीजें हमारे सामने आती गई, और उनमें अगर हम बात करें रोटी कपड़ा और मकान की, तो ये मूलभूत आवश्यकता उस समय से शुरू हुई, आज भी हमारे जीवन की ये बहुत ही मूलभूत आवश्यकता में होती है। बात अगर हम कपड़े की करें, तो देखिए एक समय ऐसा था कि जब हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, छाल पत्तों को ढककर शरीर को सुरक्षित रखा जाता था धूप गर्मी और वर्षा से। तो ऐसे समय में जब मनुष्य ने सभ्यता के विकास के साथ कपड़े की तरफ कदम बढ़ाए, तो निश्चित रूप से मानव जीवन ने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। आज की विकास यात्रा में मेरे साथ हैं श्यामवीर सिंह और मैं शरद शर्मा। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: श्याम जी, बात हम जब कर रहे हैं आदिम सभ्यता से आधुनिक युग तक के बीच की, तो उस दौर में बहुत सारी चीजें हमने प्राप्त की है, और अब हम उस स्थिति में आ गए हैं कि जहां पर हम बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं और उससे भी आगे प्राप्त करने के लिए मनुष्य सभ्यता जो है बढ़ती जा रही है। अगर इसमें अगर हम जो शुरुआती दौर की बात करते हैं, तो उसमें मैंने आपसे जैसे कहा कि रोटी कपड़ा और मकान है, तो रोटी कपड़ा खाने के लिए भोजन तो मिल जाता था, लेकिन उस समय की उस सभ्यता में जो कपड़े की जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने इसके बारे में भी अनुसंधान किए और कपड़ा विकसित किया। आज की हम विकास यात्रा में बात कर रहे हैं इसी कपड़े के आधार को मानकर उसकी उत्पादकता को बढ़ाने की बात, और वो है कपास।
1: शरद जी, आपने तो पूरा जो हमारे कपड़े का विकास किस तरह से हुआ वो कहानी हमको सुना दी है। लेकिन शरद जी, बात हम करें, जब मनुष्य के दिमाग में ये चीज आई कि कुछ शरीर के हिस्सों को हमें ढकना चाहिए, तो शुरुआती जो दौर था, जैसा आपने बताया कि जो हम कहें कि प्राकृतिक रूप से या तो वो खाल होती थी जो पशुओं की, या फिर प्राकृतिक रूप से कुछ छाल होती थी, उनका उनके द्वारा ये ढका जाता था। लेकिन शरद जी, हम बात करें अपने भारत के विकास की, तो भारत, देखिए, ये कपड़े की जो पहचान है हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है। जब किसी उच्च सभ्यता की बात करते हैं तो उसमें उच्च दर्जे के कपड़ों का वर्णन जरूर मिलेगा। तो हमारे भारत में आदिकाल से ही यूं कहें कि कपड़े का एक बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र रहा है, बहुत तरह के कपड़े यहाँ पर बनते रहे हैं। तो भारत आज भी कपड़े के मामले में दुनिया के सभी देशों से अग्रणी है, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो भारत को मिलता है वो कपड़े के माध्यम से मिलता है।
0: हाँ, और भारत सरकार ने देखिए इसी कपड़े की निर्यात के पीछे जो इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें इसकी जो कह सकते हैं कि मूलभूत जरूरतें होती है, जो कपास होता है उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन यानी कपास क्रांति मिशन की शुरुआत की है, उसको मंजूरी दी है, और इसका उद्देश्य है 2026-27 से 2030-31 तक 5,659.22 करोड़ रुपए के बजट के साथ कपास की उत्पादकता को बढ़ाना और भारत को और भी इसमें आत्मनिर्भर बनाना, ताकि भारत का कपड़ा जो है निर्यात ये और भी आगे बढ़े और आर्थिक दृष्टि से हम और भी इसमें सक्षम हो सके।
1: शरद जी, और हम बात करें कपड़े के निर्यात की, तो भारत के अलावा जो भारत के ही कभी हिस्सा रहे, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये भी अग्रणी देश हैं। इन देशों को भी सबसे ज्यादा जो विदेशी मुद्रा मिलती है वो कपड़े के माध्यम से मिलती है। अब भारत सरकार ने कपास के उत्पादन के लिए जो कपास मिशन शुरू किया है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, किसानों को क्या लाभ होगा इसकी, हम अगर किसानों को जानकारी दे दें तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और भारत का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ सकेगा।
0: इसमें इस मिशन में जो आपने बात की है, यहाँ पर हम बताते चलें कि इस मिशन के तहत उच्च उपज वाले बीजों और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके 32 लाख

0: किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया।
1: शरद जी, जो अभी उत्पादन क्षमता है प्रति हेक्टेयर हमारे देश में काफी कम है, और ये लगभग 480 यूं कह किलो के आसपास ही कपास पैदा होता है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि जो विदेशों में 755 के आसपास जो निर्धारित लक्ष्य रखा गया प्रति हेक्टेयर, तो अगर इसको हम प्राप्त कर लेते हैं तो भारत में जो कपास उत्पादन हो रहा है, जो गांठों की संख्या उस लगभग दोगुनी हो जाएंगी, और हमारे जो भारत का जो कपास है बहुत उच्च क्वालिटी का होता है, तो अधिकतर देशों में भारत के कपास की मांग बहुत ज़्यादा है, और भारत की जो मिल है उनमें भी हमारे कपास की बहुत ज़्यादा मांग होती है। तो अभी तो हमारे देश से काफ़ी मात्रा में जो उच्च क्वालिटी का जो कपास पैदा होता है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन सरकार की मंशा ये है कि जो हमारा कपास है उसको हम कच्चे माल के तौर पर एक्सपोर्ट ना करके और हम अपनी मिलों को दें, सस्ता और कपड़ा अच्छा मिलेगा, तो उस कपड़े को बना करके हम एक्सपोर्ट करेंगे तो भारत को भारी मात्रा में जो है
0: आर्थिक लाभ होगा।
1: आर्थिक लाभ होगा।
0: और जो अभी हम देखते हैं कि विदेशी ब्रांडों के कपड़े हम यहाँ पर देख रहे हैं, उनके कई आउटलेट्स खुल चुके हैं, तो ऐसा ही आउटलेट बाहर के देशों में भी खुले, तो उसके लिए सरकार प्रयासरत है कि इस जो आधारभूत जो हमारा रिसोर्स है कपास, उसको हम खुद से ही उपयोग में लाकर अच्छे और आधुनिक तकनीक और आधुनिक डिज़ाइन और फैशनेबल जो है मार्केट में कपड़ों को ला सके, जिससे हमारा भारतीय ब्रांड भी विदेशों में उसी तरह से अपने आप को जमा सकेगा जैसे आज हम देख रहे हैं कि बाहर के देशों के ब्रांड भी हमारे यहाँ है। और इसमें इस जो ये कपास मिशन की जो मुख्य बात है, ये अवधि है 5 वर्ष की, ये हाल ही में 2026-27 से शुरू की गई है, और इसका जो लक्ष्य है 2030-31 तक का, और बजट भी देखिए श्याम जी इसमें काफ़ी रखा गया है, और जैसा कि हम बता चुके हैं कि 5,659.22 करोड़ रुपए का बजट है, और लक्ष्य जो है 2030-31 तक 498 लाख गांठ कपास का उत्पादन और प्रति हेक्टर उत्पादकता को बढ़ाना है जो कि 755 किलोग्राम तक पहुंचे।
1: बिल्कुल।
0: और इसके अलावा केंद्रित क्षेत्र जो है इसमें देश के 14 राज्य हैं और उसके 140 जिलों को लिया गया जहां पर मुख्य रूप से कपास का उत्पादन होता है।
1: और शरद जी, अगर भारत में ये कपास का उत्पादन बढ़ा तो भारत के अंदर जो कपड़े की मिले हैं उनको अच्छी क्वालिटी का कपास मिल सकेगा, दूसरा जो भारत से एक्सपोर्ट हो जाता है, और भारत में बहुत सारा इंपोर्ट हो रहा है बाहर का कपास, तो इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने इसलिए कम की है, तो किसान भाई ये कह रहे थे कि आपने बाहर के कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिए तो हमारा कपास कैसे बिकेगा। देखिए, उसका हमारे कपास का और जो इंपोर्ट करते हैं उसकी कोई तुलना नहीं है, हमारा कपास बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, और यूँ कहें कि अभी भी हम वो नेचुरल पुराना जो कपास हुआ करता था जिसका रेशा काफ़ी हाई क्वालिटी का था वो उसका हम उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो नई नई टेक्निक से जो कपास उत्पादन किया जा रहा है और उसका जो कहकर उनका उत्पादन एक हेक्टेयर बहुत ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है हमें, तो हम अपनी मिलों के लिए वो कपास उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन शरद जी, जो कपास के क्षेत्र है उसमें अपना राजस्थान भी आता है, जो गंगानगर का एरिया है, पंजाब का एरिया है और गुजरात का एरिया है जो राजस्थान से लगे हुए हैं, उनमें कपास बहुत पैदा होता है, तो जो कपास की जो किस्में हैं अगर सरकार चाहे तो वो जो कपास हमारे देश के अंदर वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर भी, तो उन अच्छी ऐसी किस्मों की जो खोज की जा रही है। कपास में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, कीट बहुत ज़्यादा लगता है इसके।
0: हाँ, ये बहुत दिक्कत वाली बात है, इसीलिए सरकार जो है वो वैज्ञानिक खेती के तौर तरीके अपनाते हुए नई तकनीक और कीट प्रतिरोधी बीजों का उपयोग करने की जो है इसमें सलाह दे रही है और इस पर काम किया जा रहा है।
1: लेकिन दो तरीके हैं उस जो जेनेटिक तरीके से भी हम ऐसे कपास के बीज उत्पादन कर सकते हैं जिसमें कीड़ा नहीं लगता है, तो आपको याद होगा पहले एक बीटी कॉटन करके आया था, लेकिन उसके दुष्प्रभाव इतने ज़्यादा थे कि वहाँ की जो वनस्पतियाँ वहाँ के कीट वगैरह जो होते थे उनमें जो कहते हैं फूड चैन होती है वो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ उस एरिया को, तो सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया, हालांकि उत्पादन काफ़ी अच्छा था लेकिन वो हमारी क्लाइमेट के लिए बड़ा ही खतरनाक था। तो जेनेटिक तरीके से जो भी बीज उत्पादन होता है और हम खेती करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव तो होगा, लेकिन इसका दूसरे फायदे होते हैं कि हमें उत्पादन ज़्यादा मिल जाएगा, कीट पतंगे नहीं लगेंगे। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम ऐसे बीज प्राकृतिक तरीके से उत्पादन करें तो वो उसमें जो हल्का फुल्का जो कीट लगेगा ना, उसके लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दवाइयों का इस्तेमाल हाई क्वालिटी के उच्च क्वालिटी के बीज डाल करके और जो तकनीक है इसकी कृषि करने की, उसको हमें बदलना होगा। अभी हम क्या करते हैं कि पूरे खेत में एक ही तरीके से कपास को बीजों को बिखेर करके बोते हैं, लेकिन जो टेक्निक है जो कि पट्टियां बना करके खेती की जाती है उसमें पानी की मात्रा कम लगती है। जो नालियां बना दी जाती हैं और पट्टियों पर कपास उगाया जाता है, बीच बीच में नालियों के अंदर पानी लगाया जाता है। और दूसरी आजकल एक टेक्निक और आई है कि जो पट्टियों के ऊपर एक प्लास्टिक डाल दी जाती है और उससे पौधा उग सके वहाँ पर एक छोटा सा होल कर दिया जाता है और वहाँ पर ड्रिप लगा दी जाती है। तो ये दो तीन टेक्निक कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों तक पहुँचाई गई हैं। अगर ये सक्सेस हुई तो मुझे लग रहा है कपास का उत्पादन हम 755 टन जो 755 जो किलोग्राम का लक्ष्य रखा है सरकार ने, वहाँ तक पहुँचने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसमें देखिए अभी जो गंगानगर है हमारा जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास और सबसे बढ़िया क्वालिटी का राजस्थान के अंदर कपास वहाँ पैदा होता है। तो कपास के मामले में भारत अग्रणी है। और पुराने समय में जब हमारे यहाँ कपड़ा आम मतलब यूँ कहें कि हाथों से बनाया जाता था, और आज भी खादी हाथों से बन रही है, खादी की मांग दुनिया भर में है, तो अच्छी क्वालिटी का कपास होगा तभी हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, एक्सपोर्ट होगा और हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।
0: इसमें गुणवत्ता सुधार की बात भी है। देखिए हम जानते हैं कि कपास की भी किस्में अलग अलग होती है, लेकिन कपास वही बढ़िया होता है जिसमें लंबे रेशे हों। तो सरकार ये जो कपास मिशन क्रांति योजना शुरू कर रही है, इसमें उनका मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे बीज लाना कि जिससे लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन हो और इसके साथ साथ किसानों की आय भी बढ़े। क्योंकि देखिए किसान हमारे इस आर्थिक अर्थव्यवस्था का जो कहें आर्थिक क्षेत्र का एक बड़ा मजबूत स्तंभ है। तो कार्य में तकनीकी और अन्य पहलुओं के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसान का जीवन भी उच्च स्तर का हो। तो किसान की आय जो है 32 लाख से अधिक किसानों के कपास जो उत्पादन करने वाले किसान हैं उनकी आय में वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात यह है आत्मनिर्भरता, कपास आयात पर निर्भरता कम करना ताकि हम अपना जो काम है वो आसानी से कर सकें। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो ये मिशन चलाया जा रहा है उसमें मुख्य रूप से एक और बात ध्यान देने वाली है कि कस्तूरी कॉटन भारत गुणवत्तापूर्ण ट्रेसेबल भारतीय कपास को बढ़ावा देना है, ये एक अलग चीज है। और तकनीकी हस्तक्षेप भी करना है कि उच्च घनत्व वाले रोपण हो, तकनीक का उपयोग करें जिससे अधिकतम जो है पौधरोपण हो सके, कम जमीन में भी हम अधिकतम उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए सहायता भी इसमें दी जा रही, 2000 से अधिक जो है जिनिंग फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि कपास जब खेतों से वहाँ आए तो उसको वापस परिशोधित करने का जो काम है वो बहुत अच्छी तरीके से आधुनिक तकनीक और मशीनों के द्वारा हो जाए। तो इसमें एक और ये है कि प्रधानमंत्री के एसएफ विजन, अब एसएफ विजन ये है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, कितनी बढ़िया बात है।
1: बिल्कुल
0: ये जो है वो इसका हिस्सा है और जो कपास क्षेत्र को मजबूत करने के लिए तैयार किया। हमने पहले भी कहा था कि अगर किसान का कपास का उत्पादन अच्छा होगा तो उसके रेशे अच्छे होंगे, रेशे से वो फाइबर जो जाएगा कपड़ा अच्छा बनेगा और उसमें नई फैशंस आएंगी, नई नई चीज़ें बनेगी, बाहर एक्सपोर्ट उसको हम बाहर भेजेंगे, उसका निर्यात करेंगे और उसके बाद ये भारतीय जो कपड़ा क्षेत्र है ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम बनकर हमारे विदेशों में जाकर अपनी धाक जमाएगा और हमारे लिए जो है विदेशी मुद्रा का कवर भी करेगा।
1: और शरद जी हम बात करें जो भारतीय कपास है ना उसकी मांग दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यूरोप के अंदर जो रेशा पैदा किया जाता है वो केमिकल का रेशा होता है, तो वहाँ पर कॉटन सा दिखने वाला कपड़ा बहुत मात्रा में बनता है, वो बहुत सस्ता होता है, तो उसको एक्सपोर्ट करते हैं वो, लेकिन भारत का कपड़ा इंपोर्ट करते हैं। मतलब सेम तरीके का कपड़ा है भारत से इंपोर्ट कर रहे हैं, अपना कपड़ा वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कारण उसका यही है कि जो भारतीय कपड़ा है जो एकदम उत्तम क्वालिटी का जो देशी कपास है उससे बना होता है और वो खासकर यूरोप की फैक्ट्रियां वो ज़्यादातर केमिकल रेक्रॉन वगैरह का इस्तेमाल करके रेशे को बना करके, और वो ना तो शरीर के लिए अनुकूल होता है ना पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है, लेकिन हमारा जो कपड़ा बनता है कपास का वो अपने मौसम के अनुकूल होता है, यानी सर्दियां आएंगी तो वो कपड़े गर्म होते हैं और गर्मी में वो ठंडक देते हैं। तो जो हम कपड़े पहनते हैं ना आज के समय में कहते हैं कि आप सूती पहनो, तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगी, पसीना सोख लेता। हम देखिए ऊपर की तरफ अगर हम बात करें कि शर्ट भले ही कैसी पहन लें, पैंट कैसी पहन लें, लेकिन हम

0: अंडर गारमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर हम प्योर कॉटन के पहनते हैं, क्योंकि वो सीधे शरीर के संपर्क में रहते हैं और वो पसीने को आसानी से सोख सकते हैं। अगर शरद जी हम कपड़े की भारत की बात करें तो देखिए, आज़ादी से पूर्व भारत में बहुत भारी मात्रा में कपड़ा एक्सपोर्ट किया जाता था, और भारत का जो कपड़ा इंडस्ट्री थी वो दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे रिश्ती सबसे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा यहीं बनता था। लेकिन जब से आधुनिकीकरण के नाम पर यूरोप में मशीनों का उदय हुआ, तो हम करें इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर शहर है वहां पर सबसे ज्यादा मशीनें लगी, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय कपास को कच्चे माल के तौर पर यहाँ से वो लेके चले जाते थे,
1: जी
0: यहाँ के मार्केट में जाने ही नहीं देते थे। तो हमारे जो बुनकर थे, जो कि सबसे ज्यादा रोजगार पहले कपड़ा देता था और उसके बाद कृषि क्षेत्र था, तो वो जो कपड़े के बुनकर थे, जो घर घर काम होता था, रंगाई का, बुनाई का, कताई का, हर घर में महिलाएं वो सूत काटती रहती थी, तो बहुत बड़ा रोजगार का साधन था और हमारा कपड़ा दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। तो अंग्रेजों ने देखा कि कपड़े की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, कपड़े की डिमांड और बढ़ेगी आने वाले समय में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी तेजी से। तब उन्होंने क्या, मैनचेस्टर में मशीनों का प्रयोग करके वहां से कपड़ा उत्पादन शुरू किया और उस सस्ते कपड़े को यहाँ भारत में यहाँ पर लेके आ गए, तो हमारे बुनकरों को जो उनसे कंपटीशन नहीं कर पाए, हमारा हाथ का बुना कपड़ा महंगा होता था, उनका मशीनों का सस्ता पड़ता था, तो धीरे धीरे जो गांव के अंदर हमारे बुनकर थे वो खत्म होते गए। आजादी के बाद में ध्यान दिया गया, सरकार ने क्या किया कि बुनकरों के संरक्षण के लिए खादी ग्रामोद्योग परिषद जो थी ना, उसके माध्यम से उनको लाभ देने की कोशिश की, और वो आज तक जारी है। जो गांव का जो बुनकर बचा हुआ है, तो वो खादी ग्रामोद्योग जो परिषद है उनके कारण और भी कई संस्थाएं उनके कारण, सरकार की ये मंशा है कि जो भी बुनकर अभी बचे हुए हाथ से कपड़ा बनाते हैं तो उनको संरक्षण दिया जाए और उनके बने हुए कपड़ों को हम प्रचार प्रसार करें। तो आज खादी एक बहुत बड़ा ब्रांड माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बना दिया है, खुद भी वो खादी के कपड़े पहनते हैं, और आप बाजार में जाओ तो जहाँ खादी लिखा हो तो समझ लेना है कि भारतीय और एक अच्छी क्वालिटी का गुणवत्ता वाला कपड़ा बहुत भारी
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मात्रा में।
1: इसमें
0: तो
1: कोई दो
0: कहीं ना
1: राय
0: कहीं
1: नहीं।
0: ये सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है। अब किसान उत्पादन अच्छा करेंगे और जो सरकार ने जो प्लान बनाया है, जो कपास मिशन, उसके अंतर्गत ये किसानों के लिए एक तो नई तकनीक देनी है, नए बीज देने हैं, और प्रोसेसिंग मशीनें जो कपास निकलने के बाद जो उसका बीज निकालते हैं ना, उसके लिए वहाँ कपास जो की जो रेशा खराब ना हो, तो आधुनिक मशीनों का समावेश करते हुए अगर हम ये आधुनिक खेती में जाएंगे किसान, तो मुझे लगता है कि किसानों की जो लक्ष्य है 755 किलोग्राम का, वो लक्ष्य हासिल होगा, साथ साथ हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
1: इसमें हम ये भी देखते हैं कि इस मिशन में जो है, जो फोकस किया गया है वो वैज्ञानिक अनुसंधान है, तकनीकी नवाचार है, और विस्तार सेवाओं के माध्यम से उच्च उपज, लंबे रेशेदार जो कपास की खेती को बढ़ावा देना, और इसके लिए 600 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित हुआ है। अच्छा, महाराष्ट्र का जो अकोला क्षेत्र है वहां के किसानों ने सफलतापूर्वक उच्च घनत्व रोपण विधि को अपनाया, तो इसका फायदा यह हुआ कि कपास का उत्पादन बढ़ा। अब इस विधि को अगर किसी और राज्य में जहां पर कपास का उत्पादन संभव है, तो वहां के राज्यों के किसानों को भी यहां पर लाया गया, तो इसमें तेलंगाना के किसानों को इन तकनीकों को दोहराने के लिए एक्सपोजर विजिट भी करवाई गई। तो इस मिशन में ये भी हो रहा है कि अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो आपको वहां पर जाकर खुद से सब चीजें देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा तेलंगाना में हमने देखा कि 345 जिनिंग केंद्रों को अधिसूचित करते हुए स्लॉट बुकिंग की सुविधा और कपास खरीद की सुव्यवस्थित व्यवस्था करने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया जाएगा। ये भी सरकार की मंशा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस योजना की हम बात कर रहे हैं, ये हाल ही में 5 मई 2026 को ये लॉन्च की गई है, और 2030-31 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। और आज हम जब देखते हैं कि भारतीय बाजार में आजादी से पहले जो जितना भी कपड़े का मार्केट था, जो भी हमारे पास रिसोर्स थे, हमारे पास तकनीक नहीं थी, हमारे पास फैक्ट्रियां नहीं थी, तो वहां आजादी से पहले का जो सारा सामान है विदेशों में जाता था, वहां से बनकर आता था, लेबल वहां लगता था और बिकता हमारे यहाँ था। तो उस स्थिति से निपटने के लिए आजादी के बाद जो सरकार ने जो प्रयास किए, उसका नतीजा ये रहा कि आज हम कपड़े के निर्यात के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें जो छोटे छोटे लघु उद्योग वाले हैं, आज भी हम देखते हैं कि जो रुई है उससे धागा और फिर उससे सूत बनाकर कपड़ा बुनना है, ये काम अभी भी हो रहा है। और जैसा कि हमारे राष्ट्रपिता जी थे जो उन्होंने तो इस चीज को आजीवन अपनाया, और हमारी सरकार भी उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए ऐसे लोगों के जो हाथ से बने हुए रोजगार है, हथकरघे से निर्मित जो वस्त्र उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार चाहती है कि ऐसे कपास का उत्पादन किया जाए जिसमें उनको उच्च गुणवत्ता की तकनीक के माध्यम से उनके उद्योग को आगे बढ़ाकर एक ग्लोबल मार्केट तैयार किया जाए।
0: और शरद जी, एक यहाँ पर प्रश्न और भी आता है कि यदि भारतीय किसानों को और लाभ चाहिए और जो हमारे बुनकर अभी भी जीवित हैं, मतलब जीवित हैं कि इतने पावर लूम लगने के बाद भी वो कपड़ा बना रहे हैं, तो सरकार को ये चाहिए कि जो हमारे हाथ से कपड़ा बुनने वाले हैं उनके लिए हमारे अच्छी क्वालिटी का किसानों द्वारा उत्पादित कपास उनसे खरीद कर उनको, या कम सस्ते दामों पर अगर मिले उनको, तो हमारा जो कपड़ा है ना बुनकर है और ज़्यादा मात्रा में प्रोत्साहित हो सकेंगे। अभी क्या बने हुए कपड़ों पे जो बिकते हैं ना, जो हमारी दुकानें खादी की होती हैं, तो वहाँ पर इनको 30% 40% उपभोक्ता को जो सब्सिडी दी जाती है वो वहाँ ना दे करके अगर सस्ता कपास उपलब्ध करा दिया जाए तो बुनकर और साथ में किसानों को भी इससे फायदा होगा। अभी क्या होता है देखिए कि जब फसल होती है ना, उस समय जैसे कपास की फसल आ गई और उस समय बहुत भारी मात्रा में इम्पोर्ट भी हो गया, तो उस समय किसानों की जो गांठें होती हैं वो कहीं ना कहीं जो लगे कि वो थोड़ी सस्ती हो जाती हैं, तो वो बाहर के लोग उसका बहुत फ़ायदा उठा ले जाते हैं, तो वो सारा थोड़ा सा पैसा बढ़ा करके और वो खरीद के अपने जो पावर लूम है वहाँ पर उनको दे देते हैं और उससे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बना करके और फिर वो भारत में एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो जैसे एक फैक्ट्री के कोई है तो उसकी कैपेसिटी होती है भाई कितना कपास 6 महीने के लिए साल भर के लिए खरीद कर रख सकती है, तो जो सरकार को उन फैक्ट्रियों को जो पावर लूम है या हाथ से कपड़ा बना रहे हैं उनको और पैसा देना चाहिए कि अपने साल भर के लिए किसानों का कपास खरीद के रख सकें, तो उनको जैसे कि जब महंगा हो जाता है तब तकलीफ ना हो और किसानों को भी प्रॉपर पैसा मिल सके। यानी एक रेट निर्धारित कर दी जाए कि 12 महीने एक ही रेट में अगर उनको कपास मिल जाएगा तो हमारे कपड़ा मिल को बहुत फायदा होगा और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और किसानों को भी मुनासिब दाम अपनी जो कपास के उत्पादन का मिल पाएगा। तो ये जो योजना बनी है कपास मिशन, इसके अंतर्गत जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि जो मशीनरी है और नई तकनीक नए बीज इस पर ध्यान दिया जा रहा है और ये बहुत बड़ा बजट है, कोई छोटा मोटा बजट नहीं है। मुझे लगता है अगर सही इस्तेमाल हुआ इस बजट का तो निश्चित रूप से जो कपास के जो हम कहें जो कपास का जो उत्पादन हो रहा है भारत में बढ़ेगा और भारत मुझे लग रहा है अपनी जरूरत तो पूरी कर सकेगा।
1: और इसमें पिछले एक दशक में हम देखें कि MSP के माध्यम से भी इसमें लगभग उसको खरीदने में जो सरकार ने दुगुना काम किया है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे केंद्रों में करीब 65,000 करोड़ रुपए की कपास खरीदी गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, जिनिंग मिलों और बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और नकली बीज न हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो वहीं पर होती है। तो उन सब के लिए बहुत तरह से कानूनी प्रक्रियाएं सुरक्षित करके इस योजना को आगे बढ़ाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। और इसमें जो हम ये देख सकते हैं कि कृषि अधिकारी भी है जो गांव-गांव जाकर किसानों को इस ऐप के बारे में, जो कि हमने बताया कपास के लिए जो सरकार ऐप बनाने वाली है और ला रही है, तो जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार ने 9 भाषाओं में प्रचार अभियान चला रखा है जिसमें सोशल मीडिया भी है, प्रिंट माध्यम भी है, कृषि अधिकारी जा रहे हैं और इस ऐप के उपयोग और पंजीकरण में मदद कर रहे हैं ताकि तकनीकी प्रेमी युवा भी इसमें अपना सहयोग देकर इस चीज से किसानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं जहां पर विशेष रूप से कपास का उत्पादन होता है।
0: और शरद जी, सरकार को एक काम और भी करना होगा कि हमारे देश में अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कपास का अच्छी भारी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है, तो उन क्षेत्रों की पहचान करनी है। बहुत सारी खाली जमीन पड़ी है, उनको पहचानना है और उस जमीन को भी जो कपास के योग्य उत्पादन के योग्य है तो वहाँ भी वहाँ के किसानों को जो है तकनीकी जानकारी दे करके और वहाँ पर कपास उगाया जा सकता है। तो भारत में अभी भी यो कहें कि बहुत भारी बड़ी मात्रा में ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कृषि बहुत कम की जा रही है। अपने जैसलमेर का एरिया ही देख लें, बाड़मेर है, बीकानेर है, यहाँ पर सारी भूमि खाली पड़ी है और बहुत ही कम मात्रा में खेती की जाती है। और खेती के नाम पर दो तीन फसलें हैं, जबकि यहाँ पर अरंडी और ये कपास का भी उत्पादन अच्छी तरह से किया जा सकता है। और जो सर जी इसका जो कपास का जो क्लाइमेट है ना, वो थोड़ा सा अलग क्लाइमेट चाहिए होता है। तो मुझे लगता है जो हमारा ये पश्चिमी राजस्थान का ये क्षेत्र है वो अरंडी और कपास के लिए तो बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि उसको जो कपास के लिए शुष्क भी चाहिए और बारिश भी चाहिए,
1: दोनों चाहिए।
0: हाँ, तो गंगानगर वाला इलाका है और जो ये है, और साउथ का जो इलाका है तटीय क्षेत्र, और जैसे तेलंगाना वाली बात की, वहाँ पर वो भी क्लाइमेट बहुत अच्छा सूट करता है। गुजरात का पूरा इलाका ही कपास का क्षेत्र और अरंडी का क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं हम यूँ कहें कि कपास उत्पादन में, हालांकि भारत की स्थिति आज बहुत अच्छी है और भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है और अपनी जरूरतों को भी पूरा कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि भविष्य में जो योजना है कपास मिशन, इसके माध्यम से और भी उत्पादन अच्छा होगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं।
1: 2004 और 2014 के बीच में लगभग 173 लाख गांठे, ये जिसका मूल्य था 24,825 करोड़ रुपए की, ये खरीद की गई थी। लेकिन 2014 से 24 के बीच में ये बढ़कर 473 लाख गांठे तक पहुंच गई और इसका जो कुल रेवेन्यू मिला है 1.37 लाख करोड़ रुपए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार जो है भारतीय कपास निगम की स्थापना करके, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए MSP के तहत जो है वो कपास खरीद करता है, तो इस माध्यम से सरकार ये और कार्य करके कृषि क्षेत्र में जो किसान कपास उत्पादन कर रहे हैं उनके आय, देश की वस्त्र उद्योग की जो चाल है, उसकी जो गति है, उसको आगे बढ़ाना और भारत का जो वस्त्र उद्योग है उसको एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल मार्केट प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा।
0: और शरद जी देखिए, किसी भी देश के विकास में जो उस देश का एक्सपोर्ट होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और भारत का जो मुख्य निर्यात है वो कपड़ा है, तो कपड़ा के क्षेत्र में सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पर न सिर्फ किसानों के लिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जो मिल है, जो कताई होती है, उन मिलों को भी आधुनिक मशीनों के माध्यम से अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हमारा जो भारत है वो जो पुराना भारत था, जिसमें कपड़े के लिए पहचान होती थी और पूरी दुनिया को भारत ने कपड़ा पहनाया है, और मुझे लगता है कि एक समय फिर आएगा ऐसा कि भारत दुनिया को फिर से एक कपड़ा पहनाएगा और कपड़ा सप्लाई करने में भारत फिर से अपना वो पुराना स्वरूप है वो हासिल करेगा।
1: तो आज की इस विकास यात्रा में हमने मिशन कपास योजना के बारे में बात की और उम्मीद करते हैं कि इस योजना की जानकारी से हमारे सुनने वालों को जरूर लाभ होगा और उनको ये पता चलेगा कि इस क्षेत्र में भी, जो कि हमारा रोटी कपड़ा और मकान का एक बीच का हिस्सा कपड़ा जो कपास के आधार पर बनता है, वो कितना महत्वपूरण है। तो आज की विकास यात्रा से मुझे शरद शर्मा और
0: श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: आजादी का अमृत महोत्सव।

अभी आप सुन रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा। कार्यक्रम का संयोजन किया था श्री रामजी लाल मीणा ने और वाचन स्वर थे शरद शर्मा के। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत

0: किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म कलाकार का ये गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। FM FM 101.8 MHz पर आपसे थोड़ी ही देर में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक समेत 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने दाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा

0: स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब रिटन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर विदाई दी। द्वारा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा में भारत नेदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। दोस्तों, वो रणनीतिक साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले समय में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक अनुभव जब बाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चौर युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड में क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पेश्वर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलोर में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। सुश्रुत शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आडेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधु डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: AIDI एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्य को बहुत अच्छे तरीके से सोचा।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
4: टुडे वी आर सक्सेसफुली मैनेज्ड।
5: आज हमने एक दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से इसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया। उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। NCB ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितुआंग को गिरफ्तार किया है। थान सितुआंग NCB और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024

रेबीज के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथैम्फेटामिन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी अजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथैम्फेटामिन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: বিশেষ কিনতে টেলিডলে বন্ধুক আমি
1: জনগণ নাম পহলি পার।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात ने आज अबुधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबुधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: कागज कलम नहीं इस बार मोबाइल की नई पहल है। लेखा जोखा जानकारी ये सब अब डिजिटल है।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण

लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल बीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: विकसित भारत की तैयारी ये है अपना प्रयास।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने फिल्म सुना, फिल्म शक्ति का यह गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे, ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। आपसे थोड़ी ही देर में सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से ले करेंगे।

0: छोड़कर भागकर कलिक का नाटक टूटे।
1: है मेरा टूटे, दो दिन तक होगा अचानक बदल गया। मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति नहीं
2: है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको सात से दस दिन तक साथ में चल रही रही हूँ। एक अजीबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता। कुत्ते में क्या है, दो बच्चे अंदर गए तो दो यात्री सफर कर सकता हूँ, दो स्त्री दो पुरुष या एक स्त्री एक पुरुष।
1: एक स्त्री और एक पुरुष दो ही हम इस कुत्ते में अच्छा सफर कटेगा।
2: नींद अच्छी आएगी, तुम्हें शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
1: ऐसा
2: भी व्यवहार करना तो बहुत समय से नहीं किया। साधना पर भी आए थे हम लोग।
1: अच्छा मैम सर, आगे आपको कह रहा है कलेक्टर, दो कप कॉफी मिलेगी। लेकिन शांति अब तो बाबू कार्य चलने का वक्त हो गया।
2: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कलेक्टर मेरे लिए केवल एक कॉफी।
1: जी हाँ मैम सर, कॉफी आ जाएगी। मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। दस दिन तक रन और तन दोनों तक है। अगर मैं तो नहीं मार सकता।
2: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं भाई के बेटे बात कुछ पर काम करूंगी।
1: ओके, याद कर बातें होंगी।
2: ओके
1: मैम साहब, यही कॉफी, कुछ और चाहिए?
2: नहीं शुक्रिया। अब सारा एकांत मिला, सबसे पहले अपनी डायरी लिख ली।

प्रभाव डालने के हकदार हो जाते हैं, वो दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। उनकी वजह से उन्हें एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि वही शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नए प्रकार से प्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेते हैं। अब क्या शांति के खोज में भटकते हुए व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख पाते हैं उनके सामने। वो जीवित इसके लिए आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाते हैं उसी सहज भाव से अपने मन के सारे पद पर खोल कर रख देती है। उस दिन मैं अपने प्यारे प्यारे से बच्चे कमरे मेरे पास से गुजरे तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, हेलो जीदी, कितने प्यारे हैं तुम्हारे बच्चे, पर बहुत बहुत से दूर से बातें करती रही, जिसके पास जाते हैं तो छुट्टी हो जाती है मेरी तरह। अब गुरु जी के पास सोने की दिक्कत नहीं, जानते नहीं किसी भी इसके पिता के पास ले जा रही हूँ। क्या तुम्हारे पति भी आए हुए हैं, मेरी शादी हुई है क्या? लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर है, वो देखे नजर में ही बता रहे हैं। जैसे मैं इस लंबी यात्रा में मैंने सारी बच्ची प्राप्त की है। आप कितने दिन से घूम रहे हैं, कई वर्ष हो गए, आपके बहुत मित्र है, स्वाभाविक है अनेक देशों के अनेक युवकों को संपर्क किया आए हूँ, उनको समझा रखा है, प्यार दिया है, पाया है। मेरा तो यही मानू की तुम ग्रास दूध चरस तमस्त आदि का सेवन करते हो, करते हूँ, उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती, वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है। तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाया जा रहा है, क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है, साधु महात्मा योगियों के पास तुम क्या करना चाहती हो? बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि ईश्वर में जो आनंद मिलता है वो जैसे मतलब जैसे यथार्थ आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा सलाते के ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर्मन से स्वच्छ का मार्ग खोल देना चाहती हूँ। समग्र भारत के लोग इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ। जितना लोगों से मैंने बात की है वो सभी मेरे अनुभवों से गुजर चुके थे। सुख नशा सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज के शोषण के राज में तो त्रस्त करती है, वो उद्योग कर्म से प्राप्त ऐश्वर्य और विनाश से उठ चुके हैं, जो यात्रिक और प्रत्येक जीवन को खोखला कर रहा है, और वो उस आनंद की तलाश में है जो शांति के स्वर प्राप्त होकर पहुंच जाने की शक्ति दे। आते हैं

0: intersecção. Nossa, Galton. Nossa,
1: que Galton. Ah, tá rodando.
0: Não me diga que para ficar casa eu tenho que fazer aqui. Muito bom, não vou sorrar para o rio. Eca um cara. Eca satá. Eca chitna.
1: Kasi bagay, kasi kanyap.
0: Gulit higay or adhap na kapaho na siya yung sexo hit na ang hiniki eh. Dangan ang sarawar na dupki na gana. Please. Mga kaho, agay na pika achar ang hinasta. Chota pa hindi? Mayroon din. Yes, sarawar na nakala ka niya.
1: Yes, kasi. आप उसे घर में जाना चाहते हैं तो मैं जाती हूँ।
0: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
1: जी हाँ, वो अधिकार तो वैसे आपका ही है। आप पुरुष हैं ना? मैं कैसे ही ऊपर जाइए?
0: नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब आने की होगा। आपके साथ बातें करूँगा। आप बाली कारी नहीं थी, मैं दिखा। नहीं? बुजुर्ग के बच्चे का बाप आज भी बहुत तारीफ कर रहा था पहले कह रहा था लेकिन मैंने भी पता लगा कि तारीफ करा कर लाभ गया अरे अब तुम्हारा भी
1: मैं तो आ रहा था जब जरा थोड़ा पीछे हट जाना मैं देखना चाहती हूँ फिर अपने भाषण जारी रख सकते हैं आप तो सेवक के साथ बहुत रहे हैं
0: लेकिन वहां मुझे का आदेश था दस दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए पूर्ण ब्रह्मचर्य पूर्ण मौन शुद्ध तो यही था
1: लेकिन सिंह
0: जरा दिन शो है जोदित को पूरी स्वतंत्रता है वो किसी के साथ नहीं
1: है शायद वो तुम्हारे साथ आकर के मैं आपको
0: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था लेकिन तुम मुझे तो सबसे आकर्षक हो सबसे आकर्षक तुम्हारी सुनते तुम्हारे चमकते आंखें तुम्हारी बंदी सुनते
1: बहुत बहुत शुक्रिया बस बच चुके हैं
0: प्लीज अभी कुछ और बैठूंगा तुम्हारी बात कर सकता हूँ तुम छू सकते हो मेरी पैर कहाँ है सो गए
1: क्या तो सब एक जैसे होते हैं वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक वैसा होता है सारे का सारा हो गया जरा सोचो आप सपने देखो
0: मेरे मन को तो हम बातें करने को करते हैं
1: बातें मैं सीखी जाती हूँ हाथों से नहीं प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ लेकिन सर जी तुम सच में प्रेम करते होते तो जब आता नहीं प्रेम निर्लज नहीं
0: नैतिक होता समय को बताने के लिए तुमने कभी अनुभव किया है उसे उस हरण को मेरे पास है पियोगी
1: सच्ची तुम तेरा तनाव पर जा रहे हो अब चले जाओ
0: अरे जाओ तो मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा तो फिर से तुम
1: मैं तो नहीं
0: आता तो नहीं

0: आपके दिमाग नजर आते हैं जो दूसरों के कंधों पर ध्यान कर सकते हैं। कुछ कह रहे हैं तो बजे नहीं तो चाहिए
1: माफी चाहता हूँ। बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ, लगा जैसे आपके पास कोई गलत जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन यहाँ तो आपके पति का पास है कोई दिखाई नहीं
0: देता। फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
1: देखिए मुझे नोट कहाँ आती है, आप लोग फिर बताएंगे तो मेरा फोटो नोट हो।
0: क्या मतलब है आपका?
1: आपका समस्या है कि जिले में केवल आप दोनों नहीं, आप जैसे दोनों बहुत देखे हैं, इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ी। कंडक्टर ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके। मैं साहब यहाँ पर बैठ गया था, कभी कभी फालतू आदमी होता है
0: यहाँ पर। मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए।
1: ठीक है ठीक है, मैं जाता हूँ। दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही हूँ। मुझे बहुत दुख है,

0: हर चीज कैसे कोई दोष नहीं है। सबका सारा जोड़ा पड़ा था लोगों को सलामी से रहा है, जिनके लिए तय है सब कुछ है, लेकिन फिर विद्रोहियों का दावा पहले इधर उधर क्यों भटक रही है? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो उन्हें स्थूल आराम से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था मेरा तो नाम थी, एक बात पूछो, खुशी से पूछो, तो मां बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: हमारे लिए जाना जरूरी नहीं है,
0: हम अभी पांच की तरह कैसे हो, कैसे भी पूछते चाहिए, पांच कोई भी हो वो सरजीत भी हो सकता है,
1: शायद नहीं है, लेकिन तुम सब क्या जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि रात को पहुंचे हो और दिन भोग के साथ सच्चे सत्य तलाश कैसे कर सकते हो?
1: और ऐसे तो उसको कोई बड़ा झगड़ा क्यों दिखाई देगा?
0: शरीर के अस्तित्व की बात तो नहीं है, हम लोगों में समर्था की प्यास है, समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बड़ा बनाया सांचा है,
2: क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
0: कौन हो तुम? मैं कौन हूं? ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वही से मैं रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर से बढ़ो तो बन के प्यार को छुपाए सकती हो, लेकिन क्या सर्वदीप के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार

मन है कि तुम भी अशांत हो। तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो। इसी दर्द से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाहने से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सब कुछ तुम्हारे पति नहीं है, मेरे

नहीं, ये बात पर ही आवाज सुन रही हूँ। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए था

0: Captain, my trouble head is trouble from Mukti Pao. Sahaj Hwane Hi Mukti Hai. Mukti. Mukti.
1: जो कुछ हुआ उसके लिए
0: मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
1: तुम बहुत अच्छी हो। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा।
0: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
1: गुड नाइट।

0: था ना बंकी, इतना रात तक क्या बंकी उठता था?
1: हमें जाने लगा, कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें कर रही थी ना, हड़ताल होने वाली है।
2: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। मैंने आप फोन भी किया था लेकिन हर पैर अंगूठी ला शायद खराब था।
1: हाँ शायद बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिकवर उतार कर रख दिया था।
2: हाँ मुझे जवाब फोन भी मिला था। हमें प्रॉब्लम की थी।
1: खाना खाओगे मामा?
0: मैंने तो खाया बेटा, लगता है पहले अभी तक नहीं खाया। मेरे दोस्त थे तुम, मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। भैया को
1: पाली का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आ बाबा।
3: माँ को जरा भी रोकती नहीं दोगे?
0: नहीं दे पा रही, पहले अपने निर्भर कर लिया है।
3: मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं। मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए,
0: कहीं उनके चश्मे बने में काट न पड़ जाए।
3: स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रह से एकांत को। क्या
0: मैं तो चाहे बात कर इसे अपने तरह से बांट लिया है?
3: क्या इससे मुक्ति पा लूं? क्या वो मुक्ति होगी?
4: साधना? साधना तुम सो रहे?
1: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती
4: है। हाँ औकात से तेरा ख्याल दूर कर देना चाहिए।
1: हाँ कर देना चाहिए। कैसे हो सकता है? तो फिर कोई और बात नहीं मांग पाएगा।
4: हम शादी कर लो।
1: शादी नहीं कर सकते विराज, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
4: धोखा तो आपने ले लिया।

0: चलाने में तो सकती है, जैसे तुम चलाते हो कि तुम किसी का शिकार हो जाओ। मैं ऐसा तो नहीं चाह सकता कि मैं तेरे का शिकार हो जाऊं।
1: शिकार? तुम क्या कह रहे हो बंद?
2: किसे बता रही है?
1: खुश सपना देख रही थी।
2: ये आपने तेरे की याद कर रही थी, विनोद कमल स्वाभाविक है, सारी रात मैं ऊपर के बर्थ पर लेता
1: लेता कोपा फसा किया था। सारा समय तुम्हारे तरह हो जाए क्या क्या डरते रहे, अपनी पूरी कहानी सुनाते रहे।
2: अगर मैं यूरोपियन होता तो इससे मैं तुमसे पूछता क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
1: आप नहीं पूछोगे?
2: बेकार है, इसे तो सारे प्रेम करना ही नहीं जानता।
1: मैंने तब समर्पित हुई थी, अब हो सकूंगी।
2: जी में आता है कि नीचे उतर कर तुम्हारे शरीर को छंछोड़ डालो और जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा। तुम्हारी मदद नहीं कर सके
1: चिंता
0: तुम्हारी है, सारी रात तुम अपने शहर कर सको तुम्हारा सही छंद
2: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ।
3: हेलो सरजीत,
2: तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और माथा? ओह ये माथा तो नहीं है।
1: मेरा नाम सरजीत है।
2: ओह देखते हो तो मैं शादी कर लूँ सरजीत। भाई बताया मैडम, इसे लो, यह है श्रीमती सांत्वना ठाकुर, तुम्हारा भी तो शादी नहीं की है। तुम तो कहा था मेरे दोस्तों के बाद मिल रहे हो, वो तो है। तो तुम हो भाग्यशाली, अभी तक तो विदेशी आदमी की चर्चा है तुम्हारा पत्र रखती थी, अब वो भारतीय में रह गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंस है। वो माँ चलिए मुझे छात्र हम बहुत बड़े दोस्त है, यहाँ बैठ सकता हूँ सर जी?
1: जो कोटा है मिस्टर बाबा, और अभी बात पीते हुए है।
2: तो आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
1: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
2: जा रहा हूं, फिर भी मैंने आपके एकांत में फोन डाला। तो सर जी एक बात याद रखो, ये भारत है, यहां शोर नहीं मचाना चाहिए, जो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
1: बाहर तो खोला नहीं दो।
2: क्यों?
1: मेरी इच्छा।
2: कूपे में एक ही छान ही चलती है।
1: आपने तो सही नहीं कर सकते हैं, कैसे आ रहा है?
0: अभी तो हो रहा है, बड़ा बोटा गांधी हो रही है और ये स्टेशन का बहुत छोटा सा है।
1: बहुत सुंदर जगह है,
0: सारा पत्थर है जटिल है, वो तो और है बच्चों का स्थान।
1: तुम्हारा ऐसा कल्पना भी तो अच्छा भी है कि तुम्हारी दृष्टि में बच्चों का स्थान है, वो तो कितना मरण का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ तेरे डायलॉग के आदान प्रदान को तो यहां करना हजार गुना अच्छा है। अच्छा जा रही हूँ, बुरा ना मानना, प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत के दिल का उपभोग। अच्छा नमस्कार, क्या सोचते हैं हम जवाब दिए दोगे?
0: नमस्कार, तुम खाने के साथ हो
1: मैं नहीं उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
2: जी अभी आया,
0: लाइए
2: मैं उतार देता हूँ, आप उतरिए।
1: ये लीजिए।
0: कहीं अब तो आ सकता हूँ, खूब बात कर रही दोनों।

0: 的不舒服，所以才去看他。我是我做的干的不用去擦，我是我不看擦的就擦不。
1: अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल नांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

0: है आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय सैनिक सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत है सुख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मौलाभाई पर्दीकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, बोलजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरु पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, स्वर श्रृंगार संसद मुंबई से स्वरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार रामचंद्र क्रॉस प्रस्तुत करेंगे। आप जोर और मध्यमगत रूपक ताल में निबद्ध हैं और गतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबला पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chaliskal, Maharashtra, and inspired by his late father, Shri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Varkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over Tantukari and Laykari style. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his initiatives like his Sui Generis, the Grand Bansuri Utsav, and the Flute Symphony, a magnificent concert that has 111 flutes playing together. Vivek has performed solo as well as jugalbandi concerts with leading exponents of the santoor, sitar, violin, and also Carnatic instrumental music in many prestigious music festivals in India. Vivek has performed at many prestigious events like Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav Pune, Mogubai Kodikar Sangeet Samaroh Goa, Hampi Mahotsav in Hampi, Urja Music Festival Delhi, Pandit Ram Marathe Festival Thane, Pandit Jitendra Abhisheki Sangeet Mahotsav Goa, Gunjan Sangeet Mahotsav Indore, Goa Kala Academy Music Festival. Vivek has received many prestigious scholarships and awards. To name some, Akashwani A-Grade Artist for Indian Classical Flute, Thane Ratna Award by Hindustan Times, Pandit Sangameshwar Gurav Puraskar, Pandit Ram Marathe Puraskar, Surmani Title from Sur Shringar Sansad Mumbai, National Scholarship from Union Government of India, Vrindavan Gurukul Scholarship. Tonight, Shri Vivek Sonar presents Rag Chandra Kaus Alap, Jod and Madhyalayagat, set to Rupak Tal and Dutagat, set to Tintal. He will be accompanied on tabla by Shri Ojas Adiyar.

0: आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्रकांत, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: राग चंद्रकांत बाय रिनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adhiya. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडन समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपने दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कब्सर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके दत्त समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर दहेज पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीजे सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीजे सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश में एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है।